नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 1 तारीख, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी अज 22 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सैकेंड होए ने। साढ़े अज दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करदे हां।

परमात्मा ने जेकर इस धरती ते सानू भेजिया है ते साडनू जिस भी चीज़ की चिंता है उस तो ज़्यादा चिंता उसनू है जिसने सानू बनाया है ते इस धरती ते भेजिया है उस साड़ी सब तो ज़्यादा फिकर भी करता है ते साड़े सारे कारज भी सवारता है।

0: के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
1: दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छा दिए जब लग घट में प्राण। धर्म की शुरुआत हमेशा दया तो होंदी है, ते हंकार सारे पापां दी जड़ होंदा है। इसलिए जदों तक साढ़े शरीर के विच प्राण ने, उदों तक मनुख नूं कदी भी दया का भाव नहीं छड़ना चाहिदा। ते जेकर मनुख ऐदा करदा है तो परमात्मा हर वेले उसदे सिर ते अपना आशीर्वाद हाथ बना के रखदा है।

जिस तू रखे हाथ दे तिस मार न सके कोई, जिस ते परमात्मा दा आशीर्वाद दा हाथ हुंदा है। जो इंसान सच्चे मन दे नाल परमात्मा नू अपना मानदा है, परमात्मा अपने ऐसे बच्चे ऐसे भगत दे नाल हमेशा आशीर्वाद दा हाथ बना के रखदा है।

रेडियो रेनबो दी कड़ी ते सवेर दे 7 बज रहे ने ते वेला हो गया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा जो के तुसी सुनोगे बिल्कुल लाइव। पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत नू एक भरोसेमंद भाईवाल वजों देख रही है। भारत ने सरहद पारों दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी का मुकाबला करने लई ठोस विश्वव्यापी यत्नां लई कहा है। सरकार ने भरोसा दिता है कि देश कोल कच्चे तेल पेट्रोल डीजल कुदरती गैस और LPG का ढुकवा भंडारे और मंग नू पूरा करने लई तेल सोध कारखाने नू पूरी समर्था नाल काम कर रहे ने। हाल ही विच रेल गड्डियां च अग लगन दीआं घटनावां विच समाज विरोधी अंसरां दी शमूलियत का खुलासा होया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा लई श्रद्धालुआं दी चोण करन वास्ते एक कंप्यूटर ड्रॉ कढ़िया। इस साल की यात्रा जून में शुरू होगी और अगस्त में खत्म होगी। झारखंड में CPI माओइस्ट के 25 नक्सलियों ने हथियारों समेत पुलिस अगे आत्म समर्पण कर दिता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक वाहन ने डूंगी खड्ड में डिगण कारण दो औरतों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर के अनगढ़ इलाके विच एक घर अंदर नजायज पटाके बनाउण करके भयानक धमाके और अग लगन के हादसे दौरान एक औरत की मौत ते एक बुरी तरह जख्मी। काउंटर इंटैलीजेंस अमृतसर ने दो व्यक्तियों नू हैरोइन और पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके नशीले पदार्थों और गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अते देश दे उत्तर पछमी अते केंद्री हिस्से विच गर्मी अते लू दा कहर जारी है। इस सन हुण तक दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। अगला प्रोग्राम बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते बने रहो 102.7 FM रेनबो दे नाल 103.6 MHz ते वी।

का दिन खास हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हर सुबह आप एक नई रोशनी के साथ उठते और जीते रहो। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी वाली रिफ्रेशिंग फ्राइडे मॉर्निंग। भाई रिफ्रेशिंग तो है, बाहर जाके मौसम देखे, बूंदाबांदी हो भी चुकी है, काफी ज्यादा बदल सी सवेरे सवेरे, लेकिन मैं सोचा कि गर्मी दे विच आना है तो कुछ ना कुछ तो खास लेके जाना पड़ेगा तुहाडे लई। फिर मैं सोचा बदल है तो थोड़ी जी छिट्टा आप मीदियां ही पा दें, मौसम खुशनुमा हो जाएगा जिदा का अज का दिन है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है। हाँ जी, हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग है जी। और फिलहाल 7:04 और पूरे 50 सेकंड हो चुके ने और आवाज सुन रहे हो तुसी केदी केदी। हाँ जी हाँ जी, फ्राइडे दी सुबह, फ्राइडे दी सवेर या सुबह रेडियो दी आवाज ते पूजा टोहानी दा अंदाज लाइव सेट है जी। आई है ना फीलिंग, बस यही फीलिंग नू आपा कैरी फॉरवर्ड करना है पूरे दिन। 102.71 कीता होया जी तुसी और नाल दी नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज ते अमृतसर और नाल दी नाल साडी सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे दोस्त ट्यून कर दे ने एफएम रेनबो जलंधर नू। और जो दोस्त सानू न्यूज़ ऑन ए आर ऐप दे जरिए ट्यून करके बैठे हुए नी, तुहाडा भी दिल तो थैंक यू है जी एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग है। सो प्यारी जी सवेर दी शुरुआत मेरे नाल ते हो चुकी है, आई मीन मेरी तुहाडे नाल और साडी दोनों दी आकाशवाणी दे नाल एफएम रेनबो दे नाल। सो जिद्दां दा मौसम है ना, मैनू लगता है कि शायद रेनबो दर्शन दे ही देगा, लेकिन फिलहाल टाइम जिहड़ा हैगा वो ये कह रहा है कि अज खास की है, खास ही है। 7:06 हो चुके ने, यानी कि टाइम हो चुका है तुहाडे एवरीडे वाले फेवरेट वाले शो दा, जिसे विच तुहानू ढेर सारी इनफॉरमेशन मिलती है, यानी कि गुड मॉर्निंग जलंधर, जिसे विच इनफॉरमेशन एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज ते नाल दी नाल गल्लां बातां दा सिलसिला और एंटरटेनमेंट, अच्छे अच्छे गाने ते मैं तुहानू सुणांदी ही रहिंदी आं नाल दी नाल। बस 8:30 तक गुड मॉर्निंग जलंधर, जलंधर तो चलेगा पर पहुंचेगा पूरी दुनिया तक। 8:30 सुनोगे खबरां 10 मिनट दे लई और जिवें ही 8:40 तो 9 बजे का टाइम आएगा, हाँ जी उही टाइम है जिस वे तुसी अपना वर्कआउट का सैशन कंप्लीट कर लेंदे हो, यानी कि साढ़े नॉन स्टॉप पंजाबी बीट म्यूजिक का सैगमेंट अड्डी टप्पा। 9 बजे तुसी वापस मेरे तो सुनोगे न्यूज हेडलाइंस और उस तो बाद हाँ जी उस तो बाद एनी गैसेस, बिल्कुल सही जवाब, और उस तो ठीक बाद तुहाडा ते मेरा फेवरेट वाला शो दिल अपना पंजाबी, लेकिन ओ 9 to 10। सो कुल मिला के तुहाडा ते मेरा साथ है जी आज ठीक 10 बजे तक, हमेशा 10 बजे तक ही होंदा, लेकिन कहना ते होंदा ना आपां ते अज प्यारे प्यारे जे लवली लवली जे मौसम दे विच मैनूं लगदा कि गाना भी थोड़ा जिहा इदां दा प्यारा प्यारा हो जावे। सो स्टे ट्यून ओनली ऑन एफएम रेनबो।

सुबह की ताजगी में एक नया एहसास हो, सुबह की ताजगी में एक नया एहसास हो, खुशियों से भरा आपका पूरा

वेलकम बैक वंस अगेन। मौसम तो है ही बार लवली लवली जिया, लेकिन उस तो पहला बाहर निकल के देखो, बेड नू छड़ोंगे तुसी बाहर जाके एक जाती मारूंगे ताई ने, तुहानू पता चलूगा सही दस रही है, इनफॉरमेशन सही है मेरी या फिर नहीं। चलो हुण थोड़ा जिहा लेजीनेस नू बाय बाय करो, तो जरा उठ के बाहर जाओ, देखो प्यारा जिहा मौसम इंजॉय करो, और बड़ी सौंधी सौंधी जी खुशबू आ रही है बाहर मिट्टी दी। बारिश दी जदों बूंदा डिगदियां ने ना मिट्टी ते, किन्नी मिठी मिठी स्मैल हुंदी है, बस ओही आ रही है बाहरों। वैसे जरूरी है कई बारी थोड़ा जिहा रुकना, रुक के आस पास देखना, कुदरत नूं देखना, तो बड़ियां सारियां चीज़ां उहदे विच नज़र आ जा।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल एंड सोफुल ट्रैक। और आज का दिन कुछ होर तरीके दे नाल भी खास नजर आ रहा है मैनू थोड़ा थोड़ा, मैं दस दी तुहानू बई अज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि आलमी जीव वन सुवंता दिहाड़ा, जिहड़ा हर साल अज दिन यानी कि 12 मई नू मनाया जाता है। वैसे तो इसकी शुरुआत रियो डी जनेरो विखे हुई सी लगभग 1992 नू, उदों जिहड़ा धरती सम्मेलन उत्थे करवाया गया सी उदों ही इस दिन की शुरुआत की गई सी। और फिलहाल जिहड़ा ये दिन की शुरुआत है, मैनू लगता कि अज दे प्रेजेंट सिनेरियो दे विच बहुत ज़्यादा इस दिन की उसनू समझण की लोड़ है कि क्यों मनाया जाता है, किस तरीके दे नाल जरूरी है, क्योंकि असी किते ना किते ते बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं इस धरती नू। एग्री कर दो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जरूरी है, मतलब फार्मिंग के इदा के तरीके जिस एनवायरमेंट साढ़े वातावरण जो हार्म होंदा है, नुकसान होंदा है, उसनों घटाया जा सके। ईको सिस्टम बैलेंस रखने के लिए, हैल्दी रखने के लिए बहुत सारे इदा के मैथड्स ने फार्मिंग दे विच जो सानू अपनाने चाहिए ने। सो इस दिन नू मनाउण दा जिहड़ा मेन मकसद है, कारण वो यही है कि जीव विभिन्नता तो भाव जिहड़ा इस साड़ी धरती के उत्ते मिलन वाले जंतुआ ते पौद्यां दीआं वख-वख किस्मां ने वो किन्नियां जरूरी ने, क्यों जरूरी ने, किस तरह बैलेंस बना के रखदियां ने। डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, यानी कि जैव विभिन्नता जरूरी है, इस बारे लोगों नू जागरूक करन दे लई ये दिन रख्या गया है। साड़ी धरती ते यानी कि मदर अर्थ ते अलग अलग खेत्रां दे विच, अलग अलग रीजनस दे विच, थावां ते अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे जीव जंतु कुदरती रूप दे विच हुंदे ने, है ना, जिहड़े उस हैबिटैट दे ही ने। डेजर्ट एरिया दे विच अलग अलग तरह के पेड़ पौधे ने, जीव जंतु ने, समुंदर वाले इलाकों दे विच अलग तरह के ने, मैदानी इलाकों च होर तरह के ने, है ना। इदां वो जिहड़े पेड़ पौधे या जीव जंतु है तो परमात्मा ने ये किसी कारण करके, है ना, अलग अलग इदा के बनाए ने एरियाज और उतों उदा की वैजीटेशन दिती हुई है। जीव विभिन्नता आम तौर पर असी गल कर सकते कि कुदरती या जैविक धन के लिए जिहड़ा वर्ड यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ जीव जंतु नहीं, असी भी शामिल हाँ, यानी कि इंसान, बाकी जिन्हें भी जीव जंतु ने, रुख ने, पौधे ने, छोटे छोटे जिन्हें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे शामिल ने जैव विभिन्नता दे विच। और ये जिहड़ा जीव विभिन्नता है या फिर जीव, है ना, यही इस धरती का एक मेन मुढ़ला जीवन का आधार है। अगर इन्हां दे विच किस तरीके की कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो साड़े प्लैनेट अर्थ दे विच भी गड़बड़ी आएगी। फॉर एग्जाम्पल जे कि असी किसी पर्टिकुलर एरिया की गल करिए, किसी खेत्र दे विच मिलन वाली जिहड़ी जैविक विभिन्नता है वो उत्थों दे आर्थिक हालात ते उत्थों दे विकास उस जगह का बहुत ज़्यादा निर्भर करती है उन्हां चीज़ां ते। ते मनुख यानी कि असी इसी जैविक विभिन्नता नू साधन वजों असी वरतदे हाँ। गल्फ एरियाज दे विच ना कच्चा तेल निकलदा है, इदां नहीं ना कि असी इत्थों पुट्टिया तो इत्थों कच्चा तेल निकल आऊगा,

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इस नाल तुहाडा घर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तुहाडा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।

जी हाँ जी, केड़ी सी? केड़ी सी हो? चोटी? हाँ जी, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर उच्ची, दुनिया की सब तो उच्ची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट से पहुंच के ना सिर्फ उन्होंने तिरंगा लहराया बल्कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया। और इस अभियान नू मिशन वंदे मातरम का नाम दिता गया, जो कि 6 अप्रैल नू नवी दिल्ली तो शुरू होया सी। इस टीम दे विच 4 जाबाज महिला कॉन्स्टेबल ने, जो कि लद्दाख, कारगिल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड तो ने। इस साल BSF ने अपना 60th यानी कि 60वां स्थापना दिवस भी मनाया है। और ये शायद तुहानूं याद होगा कि मैं अपने एक दिन शो दे विच ये भी दस्या सी कि वंदे मातरम दी भी 150वीं वर्षगांठ है। सो ये सारा साल ही असी मना रहे हैं वंदे मातरम जी वर्षगांठ, सालगिरह। और जे असी गल करिए सब तो बेस्ट चीज़

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स। और फिलहाल माइक दे इस पार बैठी हुई है मैं जी, तुम्हारी दोस्त आरजे पूजा टोहानी। और फिलहाल टाइम हो गया है स्वीर दी 8:02 और पूरे 48 सेकंड, यानी कि 50 सेकंड हो गए ने, 48 थोड़ी ना गल बैठी रहती है, टाइम है फटाफट निकल जाता है। और आज की वैसे भी प्यारी जी तो इंस्पायरिंग जी मॉर्निंग है। और अगली इंस्पायरिंग न्यूज जी है वो ये है, गर्मी ने छुट्टियां आने वाली ने, है ना याद आया मैनू, तो मेरा टाइम आ गया याद, लेकिन ओह मैं बहुत डरावना टाइम लगता हूँ क्योंकि मैं इन्नी क मतलब इन्ना क बचती होंगी सी ना अपना होलीडे होमवर्क तो, मैं समझ नहीं आती कितने लुका, सारिया छुट्टियां बीत जानियाँ, सारिया छुट्टियां आखिरी वाले दिन च मैं टीम हायर की होंगी सी अपना होमवर्क करने। टीम के मेरे कजन होंगे सी जिहड़े मेरे तो उम्र के 10-10, 15-15 साल वड्डे होंगे सी, बस आप उन्होंने हायर किया होंगे, उन्होंने पता होंगे सी हर साल पूजा का यही काम है। आखिरी वाली रात जिदन मतलब सवेर नू छुट्टियां तो बाद मैं सवेरे स्कूल जाना होंगे सी, बेचारे सारी रात तक लगे रहते होंगे सी मेरा लिखण वाला काम करन। ओए मतलब क्या टाइम सी, किन्ना क टॉर्चर सी लिखण का काम। लेकिन इस बारी पंजाब च पहली बार होण जा रहा है कि बच्चे बहुत ही वधिया वाली और डिफरेंट जी एक्टिविटी करनगे। और पंजाब दे विच 12वीं तक के जिन्ने भी स्कूली बच्चे ने इन्हां दी छुट्टियां बड़ी खास और वधिया वालियां होण जा रही ने, क्योंकि इन्हां छुट्टियां दे विच इन्हां नू जिहड़ा काम

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: वेलकम बैक वंस अगेन। और फिलहाल 8:18 और पूरे 32 सेकंड हो गए ने, यानी कि टाइम ते गल्ला करन दा है, टाइम ते चल ही रहा है और नाल दी नाल चल रही है ने मेरी गल्ला बात तुहाडे नाल, यानी कि पूजा तुहानी तुहाडे नाल बनी हुई है और फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर FM रेनबो ते, जिन्हों ट्यून किया है जो 102.7 103.6 से और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते। और एक होर चीज़ भाई, देखो मैनू पता है अज फ्राइडे और तुहाडे बिल्कुल बैग पैक हो गए होणगे, निकलण दी तैयारी तुहाडी पूरी होएगी कि आपां अज दुपहर नूं शाम नूं निकल जाइए, जिद्दी ऑफिस तों आपां छुट्टी करिए ते आपां नाल ही घूमन किते चल जाइए, है ना है ना है ना। मैनू पता तुसीं

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स. और फिलहाल जरा टाइम है वो है जी बिल्कुल ही म्यूजिक वाला. टाइम है जी 8:40 और ठीक 9 तक साडा सैगमेंट जिस विच तुसी मेरी इंटरप्शन तो बिना इंजॉय करदे हो नॉन स्टॉप पंजाबी बीट सॉन्ग्स. यानी कि सैगमेंट अड्डी टप्पा. सो जल्दी दे नाल शुरू करदे आ. मैनू लगदा कि अज दा अड्डी टप्पा और आ रहा है जी प्रोग्राम दे विच फर्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून एंड Enjoy Adi Tappa.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो की कड़ी से सवेर के नौ बज चुके ने ते वेला हो गया एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस का जो कि तुसी सुनोगे बिल्कुल लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच साइप्रस दे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रधानगी हेठ कल नवी दिल्ली विच केंद्रीय मंत्रिमंडल दी मीटिंग होई। अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका लोड़ पैण ते भारत नूं ईंधन दी विक्री लई तैयार है। पुलवामा दहशतगर्द हमले का मुख साजिशकर्ता हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके विच अणपछाते बंदूकधारियों की गोलीबारी विच मारा गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले के संबंध विच लातूर तो बच्चों के एक डॉक्टर मनोज शिरूरे नूं हिरासत विच लियाए। रेल मंत्रालय ने मुसाफरां नूं सफर दौरान चौकस रहण अते रेलवे स्टेशन अते शक्की गतिविधि जां व्यक्ति दी जानकारी तुरंत हैल्पलाइन नंबर 139 ते देण लई कहा है। पंजाब पुलिस ने पठानकोट दे एक निवासी नूं पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय शाहराह 44 ते इंटरनेट नाल जुड़े सीसीटीवी कैमरा लगा के पाकिस्तान आधारित हैंडलरां लई जासूसी करने दे दोष विच गिरफ्तार किया है। गैंगस्टरां ते वार मुहिम दे 121वें दिन कल पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच 552 टिकाणे अते छापेमारी दौरान 243 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया है। लोक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946 राही गुप्त रूप विच लोड़ींदे अपराधियों नूं अते गैंगस्टरां बारे सू दे सकदे ने। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली विच अज लू दी स्थिति बने रहण दी संभावना है। इस दौरान जलंधर ते इस दे आसपास दे इलाकियां विच अज सवेरे बारिश नाल लोकां नूं गर्मी तों कुछ राहत मिली है। अते आईपीएल क्रिकेट विच अहमदाबाद विच गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 99 दौड़ा नाल हरा दिता है। ए सन हुण तक दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। अगला प्रोग्राम बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स। और बस इसीलिए देखो तुहाडी सेवा दे विच आ जाने आ, हाजिर हो जाने आ जी, जदों जदों मौका मिलदा उदों उदों ही फटाफट में उस मौके ते ना ते तुहानू इंतजार करानी आ और ना मैं वेट करदी आ। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, थोड़ी जी राहत वाली कूल मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग। स्वागत है जी तुहाड़ा बहुत बहुत एफ एम रेनबो ते। ट्यून की तरह जी तुसी 102.7 एफ एम रेनबो नू और नाल दी नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर दे लिसनर्स जुड़े होए ने साडे नाल 6:30 बजे तो 10 बजे तक बने रहणगे साडे नाल। और इसे ही फ्रीकुएंसी दे जरिए सरहद पार तो भी साडे प्यारे प्यारे लिसनर्स साडे नाल ट्यून इन करदे ने एफ एम रेनबो जलंधर नू। और किवें बोल सकते हैं जी, हाँ जी तुहाड़ी वारी भी आ गई है, आ रही हैं तुहाड़े वाल भी, न्यूज़ ऑन ही है यार ऐप ते, लिसनर्स वेट करते होंगे कि मैं उन्हों का नाम कदों लवा। लो जी तुसी भी सानू देशों विदेशों के कोने कोने दे विच बैठे मैनू पता कि बिल्कुल लाइव सुन रहे हो प्रोग्राम, क्योंकि लाइव है तो लाइव है और आकाशवाणी का एफ एम रेनबो एब्सोल्यूटली लाइव है। और ये जिहड़ियां गल्लां असीं करदे हाँ एफ एम रेनबो ते, मैं तो करदी हाँ गल्लां दिल तो और तुहाड़े दिल

तक जरूर पहुंच दिया ने इसे घर के दिल से दिल तक है जी एफएम रेनबो दा ई वाला शो जिस दा मेनू ते तुहानू रहंदा है बेसब्री दे नाल इंतजार। जी हाँ, और दिल अपना पंजाबी है शो दा नाम। सो इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी हाजिर हो सकते हो, शामिल हो सकते हो, अटेंडेंस लगा सकते हो। अटेंडेंस रजिस्टर देखो मैं खोल के बैठी हुई है, तुहानू आवाज आ गई है ना? हाँ जी, इस ते लगनी है तुहाडी अटेंडेंस। सो जल्दी दे नाल फोन चको सब तो पहला ते अपना। अच्छा चक्या हुआ ऑलरेडी, ओके। अच्छा भेज दिते ने मैसेज, ओ रुको पहले मैनू दस ते लैन दियो मैनू दस लैन दियो। मैनू पता कि तुसी जान दियो प्रोसेस की है, भी जिन्हां ने हजे तक प्रोसेस सुनिया नहीं है, अज पहली बारी सुन रहे ने या हजे उन्होंने प्रोसेस बारे नहीं पता, उन्होंने भी तो दसना बनता है ना। हाँ जी, हुण उन्हां दी वारी है। देखो फोन चको 9855 10 10 27 ते, यानी कि 9855 101027 ते की करना है, तुसी अपना मैसेज रिकॉर्ड करना है, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करूँगे, प्यारा जहा मैसेज, साफ सुथरी, पीछे हाँ जी कुदरत की आवाज़, पंछियों के चहचहाण की आवाज़ अगर आँदी है तो फिर आन दो, लेकिन उदा तुहाड़ी आवाज़ क्लीयर होवे। मैसेज प्लीज़ बहुत ज़्यादा लंबे ना होण ताकि सारे की वारी आ जाए, और इस मैसेज नूं तुसीं भेज देना है जल्दी तो पहला 9855 10 10 27 ते, क्योंकि मैं यानी कि तुहाड़ी दोस्त, तुहाड़ी आर जे होस्ट, आर जे पूजा तुहाड़े नाल बनी हुई है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी से। जल्दी दे नाल गाना वेट कर रहा तुहाड़ी, प्ले करन जा रही है। इस गाने नूं सुनने तो बाद मेरे को घट्टो घट ज़्यादा वाले मैसेज आ जाए, घट्टो घट ज़्यादा वाले, हाँ पता नहीं वैसे मैं कई बार की बोल दिनी हाँ हो जाता ना, फीलिंग तो समझ गए ना, घट्टो घट ज्यादा ज्यादा मैसेज आन, अटेंडेंस लगनी है तुहाडी अज। चलो चलो जल्दी, शाबाश, इंजॉय।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: गलती सही है, खुश रखिया भी बहुत है और सोच तो भी परे सी, और मैं जिन्हों क्या है उन्हों पता भी है। माइक की गल कर रही हाँ, जो तो पता एफएम बंद सी, वो तो मैं हमेशा इस स्टूडियो आके इन कहती हूँ कि तू मैं मिस नहीं करता। मैं तो तेन बहुत मिस कर दी, तू अपन गल् मिस नहीं करता, अपन गल् और सारा कुछ कि डिवाइन जहा हों ना, जिस दिल का कनैक्शन होंगे। बस बस हूँ मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, मैं प्रोग्राम नू अगे लेके जाती हाँ। और फिलहाल चलते हैं जी अगला वॉइस मैसेज, सुनते हैं जी कितों आया है।
1: मैं जी एस मुल्तानी जलंधर तो
0: जी
1: अडवाणी मैम प्यार भरी सत श्री अकाल तुहानू ते तुहाडी सारी टीम नू।
0: जी
1: प्यार भरी सत श्री अकाल तुहानू ते तुहाडी सारी टीम नू।
0: जी जी जी
1: एक गीत दीआं दो चार लाइनां लेके हाजिर होया जरा कबूल करना जी।
0: जी
1: पसीने ते पसीना आ गया, मई ते जून दा महीना आ गया,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: गर्मी दा महीना आ गया
0: जी,
1: मेरी जवानी गर्म है पसीना फरमा गया। गर्मियां दियां छुट्टियां पै गईयां, गर्मियां दियां छुट्टियां पै गईयां, शिमले नू लै चलना अठ अठ घंटे कट बिजली दा बुरा हो गया हाल वे, गर्मी दिया छुट्टियां पै गईयां, मई जून दे दिन आ गए, गर्मी ने मारे लोड़ा वे, प्यार तेनु कर दिया बड़ा तू भी कर ले थोड़ा।
0: जी जी जी जी बहुत शुक्रिया, तुसी गर्मी दिया छुट्टियां ते सानू सुनाता, शुक्र है वैसे गर्मी दिया छुट्टियां ते आई हाँ, बच्चों नू पूछो ना जिन्होंने जाना पैंदा इन्नी गर्मी दे विच। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई, अगला मैसेज सुनते हैं। मैनू लगता कि मेरी ही रिकॉर्डिंग किसी ने भेज दी है। ओके ये मैसेज दोबारा साढ़े को आ चुका है जी दो बारी, आप अगले वॉइस मैसेज के वल चलते हैं।
2: पूजा टहानी जी,
0: हाँ जी,
2: आपकी मीठी आवाज है,
0: अच्छा जी,
2: बोलने का सलीका लाजवाब है
0: जी,
2: आप आते हैं तो एफएम रेनबो में बहार आती है,
0: शुक्रिया,
2: तुमसे जानने की तमन्ना मन को भाती है, मन को भाती है
0: जी।
2: मैडम जी नमस्कार
0: जी,
2: जितेंद्र पासकर बोल रहे हैं पायल तो
0: जी,
2: दो चार लाइना पेश कर रहे हैं मैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर इस बर की महिमा देख, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, ऊपर वाले की जरूरत ना होती। जितेंद्र पासकर पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना
0: जी, अगला वॉइस मैसेज भी जल्दी दे नाल सुनते हैं जी।
3: रिम जिम रिम जिम
4: क्या रिम जिम रिम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ कल नवी दिल्ली विच केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका लोड पैण ती भारत नूं ईंधन की विक्री लई तैयार है। पुलवामा दहशतगर्द हमले का मुख साजिशकर्ता हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर विच अणपछाते बंदूकधारियों की गोलीबारी विच मारिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले के संबंध में लातूर तो बच्चों के एक डॉक्टर मनोज शिरूरे नूं हिरासत विच लिया है। रेल मंत्रालय ने मुसाफरां नूं सफर दौरान चौकस रहण ते रेलवे स्टेशनां दे शक्की गतिविधि जां व्यक्ति की जानकारी तुरंत हैल्पलाइन नंबर 139 ते देण लई कहा है। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक निवासी नूं पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय शाहराह 44 के इंटरनेट नाल जुड़े CCTV कैमरा लगा के पाकिस्तान आधारित हैंडलरां लई जासूसी करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। गैंगस्टरां दी वार मुहिम दे 121वें दिन कल पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच 552 ठिकाणियां ते छापेमारी दौरान 243 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार किया है। लोग एंटी गैंगस्टर हैल्पलाइन नंबर 93946 राहीं गुप्त रूप विच लोड़ींदे अपराधियां ते गैंगस्टरां बारे सौ दे सकदे ने। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच अज लू दी स्थिति बने रहण दी संभावना है। इस दौरान जलंधर ते इस दे आस पास दे इलाकियां विच अज सवेरे बारिश नाल लोकां नूं गर्मी तों कुछ राहत मिली है। IPL क्रिकेट विच अहमदाबाद विच गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 99 दौड़ां नाल हरा दिता है। एसन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.7 एफएम रेनबो रेनबो ट्यून करके देखो जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुसी ऑलरेडी जिहड़ी हासिल कर चुके हो और 10:03:14 हो चुके हैं। तो यह जो सफर चल रहा है म्यूजिकली सफर, इसनों हुण अगे लैके जाने की जिम्मेवारी जी है वो मैनू मिल चुकी है। सो स्टेशन से ड्राइवर नवा आ गया है, लेकिन ट्रेन जी चलती रहेगी एफएम रेनबो से। सो पुराने ड्राइवर तो बाद हुण सीटी बज रही है ट्रेन की और कह रही है जी चलो चलो चलो सवार हो जाओ सारे, और ये जड़ा सफर है म्यूजिकली सफर तुसी हुण किदे नाल इंजॉय करोगे। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ते की हाल चाल। मैं कहा जी रिचा जुड़ चुकी है तुहाडे नाल 102.7 एफएम रेनबो ते, ते रिचा दे नाल तुसी इंजॉय करोगे अज दा ये सफर ठीक दोपहर के 2 बजे तक। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन तो होकर अज साडी जिहड़ी है गड्डी है जाण वाली है, और मैनू पता है कि दोस्त हुण जुड़ गए ने ते हुण ओह सवार रहणगे। इधर उधर नहीं हिलना है, थोड़ी जी ताली बजाओ, वाइब लेके आओ, एक्सरसाइज करो इस गाने के नाल। हाँ जी बिल्कुल, ठुमके लगाने बहुत जरूरी है सवेरे सवेरे। सो प्रोग्राम गीत बहार दी मैं कर रही हूँ शुरुआत, और शुरुआत इस वाले ट्रैक तो नाल कर रही हूँ, उस तो बाद मिल रही हूँ थानू सिर्फ इतने ही। स्टे ट्यून्ड।

सो कोई सेलिब्रेशन है ऐसी नच लेने और पेपर च पास हो गए तभी असि नच लेने फेल हो गए तभी असि नच लेने है ना जी पैचअप हो गया तभी असि नच लेने ब्रेकअप हो जाए तभी असि नच लेने पंजाबी आ जी असि असि कितने भी नच लेने केड़ी वड्डी उंद नच सकते हैं है ना जी सो जेकर थोड़ी दिल च और थोड़ी बॉडी च भी थोड़े जे स्टेप आ रहे ना तो चलो फिर बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग क्योंकि इंजॉय करो तुसी प्रोग्राम गीत बहार और इस वाले सॉन्ग नु भी आपा है ना जी इंजॉय करना सिर्फ थोड़े लिए खास कर मैं लैके आ रही हूं जी कुछ लोगों के लिए और हो सकता है थोड़ा भी ये वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है सो इंजॉय करते हैं स्टे ट्यून्ड

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मैं कह रही हूँ जी टाइम आ गया 10:50 ते 40 सेकंड। देखो देखते देखते 10 बज दो और 10 बजे स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम और देखो आप इस टाइम तक आ गए है ना। टाइम तो ही नहीं पता लगता है और उस तो बाद बस कुछ ही बुला चाहिए कि जो 11 बजन के उस तो आप इंजॉय करेंगे अगला प्रोग्राम पंजाबी तड़का। तो मेरे नाल बहुत सारे दोस्त आज जुड़नगे रिचा दे नाल। फिलहाल गीत बहार प्रोग्राम चल रहा है जी और टाइम ही कह रहा है चलो फिर अगले गीत का भी टाइम आ गया है।

0: सो 11:12:40 पंजाबी तड़का चल रहा है जी प्रोग्राम और एक दोस्त साडे नाल जुड़े ने। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: हीरा लाल गोपाल नगर जलंधर फुलाली मंडी तो बोल रहे हैं।
0: तो हीरा मिल गया पन्ना को कि नहीं मिलिया?
1: पन्ना मैडम तुसी लभदे हो जी कोई?
0: ठीक है। सो हीरा लाल जी दसो तुसी की कहोगे अज? तुहाडा कोई है सुपना रह गया हुण तक अधूरा पूरा नहीं होया?
1: मैडम जी सतगुरु ने सानू सब कुछ दिता जी।
0: अच्छा जी,
1: जो असी चाहिया सी सानू उस तो ज्यादा मिलिया। हुण इक सुपना हैगा बच्चे मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी बस।
0: अच्छा चलो बहुत वधिया,
1: एहो ही सुपना रह गया जी बस।
0: चलो जी ठीक है ते मैं तो आज दुआ करांगी जी जेड़े सुपने रह गए ना साडे दोस्तां ते ओ पूरे हो जान जल्दी।
1: बिलकुल मैडम, असीं पेरेंट्स इन्ने मतलब मेहनत करके बच्चियां नूं पढ़ांदे रखांदे ने, इन्नी मेहनत करदे ने ते बच्चे भी बहुत ज्यादा मेहनत करदे, दिन रात पढ़दे मैडम, ते उहनां नूं नौकरी ना मिले ते बहुत
0: बारी आनी है।
1: ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ।
0: ਜੀ। ਸੋ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ?
1: ਠੀਕ ਹੈ
0: ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਕੰਠ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: और प्यार है एफएम रेनबो दिनाल 102.7 एफएम रेनबो ट्यूनिंग कितना होया है तुसी पंजाबी तड़का प्रोग्राम कर रहे हो जी एंजॉय। हेलो
1: पसीने से पसीना आ रहा है, गर्मी का महीना आ गया है। मेरी जवानी भी गर्मी है, गर्म गर्म है, पसीने में मेनू ए फरमा दिया है।
0: ए सानू भेज दिया करो, किन्नी बारी क्या है फिर मैं तुहानू कट दवा थोड़ी कॉल। देखो दिल आ शायर प्रोग्राम च तुसी अपनी लिखी हुई शायरी भेज सकते हो। कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: मैं जेएस मुल्तानी जलंधर तो जी। सॉरी मैम, सॉरी।
0: हां
1: नहीं जी प्रोग्राम
0: ठीक है। मुल्तानी जी केड़ा की सुना दसो।
1: मैम गीत मैं सुनना हैप्पी राय कोटी जी दा।
0: ठीक है जी, कॉल करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। और हैप्पी राय कोटी दी फरमाइश ते आ गई है इना दा देखो गीत। और किन्नी बारी कही जा रही है देखो, है ना जी। चलो ठीक है, प्यार हुंदा है। मैं कदों कह रही हूँ प्यार नहीं है ना, ये तो प्यार है दोस्तों का। साढ़े नाल जुड़ते हैं इस प्रोग्राम से 11 तो 12 पंजाबी तड़का च अपनी आवाज़ सुनते हैं और अपनी फरमाइश लैके साढ़े तक पहुँचते हैं। तो ये अज का प्यार नहीं है, किन्नी सालों का प्यार है। ये प्यार बरकरार रहे इसका यही दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं। पर तुम भी छोटी जी साड़ी निकी जी गल सुन लिया करो ना, जो कुछ भी लिख दे उस भेज दिया करो सानू 2 बजे दिल आज शायर है। जो फिलहाल पंजाबी तड़का है और तड़का थोड़िया फरमाइशा का है ना जी, गलों बातों का है। सो इंजॉय करते हैं अगला गीत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली च साइप्रस दे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ कल नवी दिल्ली च केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका लोड़ पैन ते भारत नू ईंधन की विक्री लई तैयार है। पुलवामा दहशतगर्द हमले का मुख साजिशकर्ता हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर विच अणपछाते बंदूकधारियों की गोलीबारी विच मारिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले के संबंध में लातूर तो बच्चों के एक डॉक्टर मनोज शिरूरे नू हिरासत विच लिया है। रेल मंत्रालय ने मुसाफरों सफर दौरान चौकस रहन ते रेलवे स्टेशन दे शक्की गतिविधि जां व्यक्ति की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 ते देण लई कहा है। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक निवासी नू पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय शाहराह 44 दे इंटरनेट नाल जुड़े CCTV कैमरा लगा के पाकिस्तान आधारित हैंडलरां लई जासूसी करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। गैंगस्टरां दे वार मुहिम दे 121 दिन कल पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच 552 टिकाणियां दे छापेमारी दौरान 243 व्यक्तियां नू गिरफ्तार किया है।

लोक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946 93946 राय गुप्त रूप विच लोड़ींदे अपराधियां ते गैंगस्टरां बारे सो दे सकदे ने। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच अज लू दी स्थिति बने रहण दी संभावना है। इस दौरान जलंधर ते इस दे आस पास दे इलाकियां विच अज सवेरे बारिश नाल लोकां नूं गर्मी तों कुछ राहत मिली है। ते आईपीएल क्रिकेट विच अहमदाबाद विच गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 99 दौड़ां नाल हरा दिता है। ए सन हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

102.7 FM Rainbow और live है तो live है जी, और इसी live देवेचा खुशियां दा खजाना वरना live radio station 102.7 FM Rainbow और tuning किधा हो या तो सी रिचा तोड़ नाल जुड़ी हुई है आज और इस सफर नू आप आगे थोड़ा लेके जा रहे हैं और देखो ये जड़ी ट्रेन आप चला रहे हैं म्यूजिकली एक्सप्रेस है ना दे इधर बीच में अगला स्टॉपेज आ गया और ये स्टॉपेज मैंने पता है बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों नू क्योंकि इधर बीच बहुत सारिया गल्लां बातें थोड़े नाल हुंदियां ने और नाल ही नाल जिहड़े छोटे छोटे जिहड़े नुस्खे है ना जी DIY कुछ तरीके कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स थोड़े लिए मैं हमेशा लैके आनी हाँ कोशिश रहती है कि दोस्तों नवी नवी जानकारी जी आप देिए और थोड़े को भी हो सकता है कोई कमाल की रैसिपी हो जिद उस्ताद हो और जी रैसिपी है तुम साढ़े शेयर करना चाह रहे हो है ना जी या फिर कोई नुस्खा जो तुम कह रहे हो कि असी तो अपलाई कर लिया हूँ FM रेनबो के नाल असी शेयर करिए 98-55-10-10-27 बिल्कुल जी 9855-101027 इस नंबर से मेरे नाल यानी कि रेनबो के वट्सएप नंबर से तुम अपनी वो खास रैसिपी या कुछ भी क्योंकि देखो एक जड़ा होम है ना स्वीट स्वीट बन रहा है इस प्रोग्राम दे विच होम स्वीट होम प्रोग्राम इंजॉय करोगे हुन 1 बजे तक सो फिलहाल इंजॉय करते हैं प्रोग्राम का पहला गीत श्रेया की आवाज़ दे विच उस तो बाद लेके आ रही हूँ थोड़े लिए पिटारा जानकारी का पिटारा स्टे ट्यून्ड

धीरे की तुहाडा भी स्ट्रेस लेवल है ओ वध रहा है। धीरे धीरे की तुहानू भी बहुत ज्यादा गुस्सा जेड़ा है ओ चढ़ रहा है ना जी, और बेचैनी हो रही है और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी दी प्रॉब्लम हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे ने, और सानू अपने आप नू नहीं पता लग रहा है कि यार ए सानू गुस्सा क्यों आ रहा है, बस एवं आ रहा है बस, लेकिन रीजन नहीं पता कि इस गुस्से के पीछे का रीजन की है। तो एक्चुअली इस गुस्से के पीछे का रीजन है जी हीट, और जी हीट वेव का असर असी देखिया है ना गर्मी का, इनू मैं अक्सर कह एक्चुअली वो देखिया, तो ये पिछे वो रीज़न ही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हूँ देखो अचानक साड़ा मूड स्विंग हो रहा है ना, निकी निकी गल ते सानू गुस्सा आई जा रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड असी हैं, थकान फील हो रही है और फोकस नहीं कर पा रहे हैं कितने, है ना जी। तो एक रिसर्च हुई है और वो यही कहा जा रहा है कि जी गर्मी है ना, है ना, ये गर्मी ही जिम्मेवार है कि असी गर्मियों के ना जी मैंटल हैल्थ है ना साड़ी वो बिगड़ जाती है, थोड़ी ट्रैक तो हट जाती है, और इनू आप ट्रैक तो किमें ले आइए, थोड़ा जा किमें बच के रही है। मैं थोड़े नाल गल करांगे प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच, फिलहाल अगले ट्रैक वाला बात चल रहे हैं और उस ट्रैक तो मैं नहीं हट सकती। इंजॉय करते हैं जी नीरज श्रीधर की आवाज़ दे विच एक गीत, तो उस तो बाद थोड़ी जी गर्मी की गलबात करांगे और थोड़ा जा किमें इस मौसम दे विच अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों होर भी ज़्यादा सता रही है ये गर्मी। सो रहो मेरे नाल, ट्यून इन दिल से दिल तक।

और मैं ही अज रेडियो दे साइड स्टूडियो दे विच जो तुहानू कह रही हां अवेयर कर रही हां कि वाकई गर्मी सता रही है और जिवें कि मैं पहले ही गल की सौंग दे कि जो भी साढ़े नाल मूड स्विंग्स थकान और एंगजाइटी और बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्चुअली गुस्सा इज़ द वन ऑफ द जो अजकल मैं देख रही हाँ बहुत ज़्यादा आ जाता है किसी भी आ जाता है तुहानू भी आ रहा होगा सो इसके पिछे कोई होर जिम्मेवार नहीं है रिस्पोंसिबल है जी ये गर्मी और रिसर्च भी हो चुकी है कि गर्मी के विच ये जेडे सारा कुछ असं फेस कर रहे हैं ना सो देखो बचिए किवें कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ स्टाइल के आप चेंज करिए ना तो मैंटल बैलेंस जोड़ा ना असं मतलब अपने आप का एक बना सकते हैं एंड बहुत जरूरी है कि सब तो पहला तो कोशिश करिए कि अर्ली वाली मॉर्निंग जी होंगी ना अर्ली तो भी अर्ली मॉर्निंग उठिए थोड़ी जी सैर करिए है ना ठंडी ठंडी जो मौसम वधिया लगता है खासकर चलो शाम नू टाइम नहीं मिल पाता एटलीस्ट सवेरे 5 मिनट 10 मिनट इन्हें तो अपने लिए कढ़ ही सकते हैं है ना जी उसनू इंजॉय करिए वॉक करिए और नाले नाल अपना जेड़ा एक स्लीपिंग रूटीन है ना वो इंप्रूव करिए गर्मी के दिनों देखो गर्मी रात में भी बहुत ज़्यादा है सो कोशिश करिए कि गर्मी नहीं आ रही है तो कुछ इदा का चीज़ करिए जिद सू नींद आनी शुरू हो सा स्लीपिंग रूटीन जोड़ा है ना कमरे का टैंपरेचर आप देख सकते हैं या फिर लाइटनिंग जेकर सूँ लाइट तंग कर रही है कुछ भी है ना उस चीज़ में इंप्रूव करिए छोटे छोटे ब्रेक अपनी दिन दे विच जो भी रूटीन साड़ी चल रही है वो लईए है ना जी और खासकर अपना जो डाइट है वह बहुत ख्याल रखिए जो भी ताज़े फल सीजनल फ्रूट्स इस टाइम चलते पे हैं और उन्होंने अपनी डाइट के शामिल करिए मूड स्विंग हो रहे हैं है ना जी तो वो कि आप कर सकते हैं वधिया वधिया चीज़ा अपने ब्रेकफास्ट के लंच के डिनर के शामिल कर सकते हैं और जिवें कि हल्की हल्की लाइट वाले आइटम्स भी खा सकते हैं गर्मी के देखो सानू भुख नहीं लगती रोटी खाने का ना इच्छा ही नहीं करती है बस दिल करता है कि ड्रिंक्स जिवें कि अपना नींबू पानी बना सकते हैं असी कोकोनट वाटर लै सकते हैं सो इदा दी चीज़ां लईए थोड़ा जिहा बच के भी रहांगे और कोशिश यही है साड़ी कि गर्मी तो अपने आप नू बचाइए है ना जी अपने आले दुआले आप छोटे बच्चे देख रहे हैं अपने घर के अपने पेरेंट्स ने है ना उन्होंने भी इस टाइम ज़्यादा लोड है सो थोड़ा जहा एहतियात रखांगे थोड़ी जी सावधानी रखांगे तो देखो हर एक चीज़ का आप सामना कर सकते हैं और सामना फिलहाल मैं टाइम का कर रही हूँ देख रही है मैंने घड़ी दियाँ सूइया 12:16 हो चुके हैं कह रही अगला गीत चला दे रिचा मैं इंतजार कर रही हूँ चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक वाल और बहुत सारे दोस्त मैंने लग रहा है मैंने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं सो जेकर तुम इस प्रोग्राम से मेरे नाल जुड़ना है तो कोई रेसिपी या कोई खास घर का कोई सोहना जहा है ना कॉर्नर हो सकता है उसकी फोटो मेरे नाल शेयर कर सकते हो या फिर कोई भी नुस्खा मेरे नाल शेयर कर सकते हो इस प्रोग्राम से 98 55 10

आप अपना के देख सकते हैं और बॉटल्स जो स्मेल भी चली जाएगी और साफ भी हो जाएंगी। फिलहाल कुछ साफ नहीं हो रहा है, गीत आ रहा है, अगला रेडियो दे एंजॉय करो। और बहुत सारे दोस्त मैनू लगातार मैसेज करे ना अगले गाने तो बाद मैं उन्होंने मैसेज शामिल करांगी। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड।

और मैं भी कितने नहीं जा रही हूँ, दोस्त भी कितने नहीं जा रहे हैं। प्रोग्राम होम स्वीट होम चल रहा है और एक मैसेज सुशील कुमार जी कर रहे हैं सानू यमुनानगर हरियाणा तो, कि हमें आजकल पंछियों और एनिमल्स के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल जी, है ना जी, ये तो है। बट मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये प्रोग्राम जानकारी दे नाल, देखो भरिया हुआ प्रोग्राम है, मैं थोड़े लिए हमेशा कुछ इन्फॉर्मेशन लैके आने। कुछ दोस्त सानू ऑडियो भी भेज रहे हैं अपनी, तो मैं उन्होंने कहना चाहूँगी थोड़े कोई खास देखो रेसिपी की जानकारी है या कोई किसी खास चीज़ की जानकारी है ना जी, फोटोज भेज सकते हो अपने घर की उस कॉर्नर की जिते तुम बह के रेडियो सुनते हो या फिर कुछ भी करते हो, है ना जी, कोई खास कॉर्नर हो सकता है। सो वो तुम सू लिख के भेज सकते हो, टैक्सट फॉर्म के भेज सकते हो या फोटो भेज सकते हो, है ना जी। सो उस तो बाद चलो फिर प्रोग्राम के आप अगे वे हाँ। और गर्मी के दिनों की गल चल रही है और एक होर चीज़ है जो चेहरे को अपने फेस में ठंडक देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, है ना जी, सोने सोने। सो वो है जी मुल्तानी मिट्टी। और अमूमन आप करते हैं कि बहुत सारे लोगों मैं देखती हाँ कि ना मुल्तानी मिट्टी जीड़ी है वो लगा के असी फेस ते की करते हैं बहुत देर तक, जो तक वो पूरी ड्राई हो जाती है, सुक जाती है ना, उदों तक असी उस मुल्तानी मिट्टी नू लगा के रखते हैं। बट एक्चुअली एक्सपर्ट्स की कहें कि ये है ना कि जोड़ा अपने फेस का नैचुरल ऑयल भी है ना, वो भी मतलब एक जो मॉइस्चर है अपने फेस के अपने चेहरे के अंदर, वो भी वो मिट्टी खिंच लेंदी है। सो एक खासकर टाइम होंदा है, ठीक है, कदों मतलब किन्ने को टाइम लगानी है, किमें लगानी है या फिर उन्होंने किमें हटाना है, हर एक चीज़ का तरीका है। और मुल्तानी मिट्टी की मैं गल कर रही हूँ। सो सॉन्ग तो बाद मैं तुम्हें दसदा कि किमें आप अप्लाई करिए, किमें हटाए।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4

0: बाजार ने उस दी शॉपिंग करने चलिए।
1: जरूर पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न ले रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो। और इस सॉन्ग तो पहला ब्रेक तो पहला गल चल रही थी जी मुल्तानी मिट्टी दी, है ना जी। कि आप पैक बना रहे हैं और किवे उन्हें फेस से लगा रहे हैं, बहुत एक तरीका होता है, यानी कि बस अपना पैक बनाया और उन्हें फेस से लगा के छड़ देता और जो पूरा ड्राई हो गया ना, बिल्कुल ड्राई हो, तो आप अपने फेस में वॉश कर रहे हैं। नहीं देखो, एक्सपर्ट्स की कहते हैं जो आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना रहे हैं ना जी अपने फेस से लगाने लिए, तो कुछ ख्याल रखना चाहिए, जिम्मे कि ऑयली स्किन, जिन्होंने पता है कि उन्होंने स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने गुलाब जल है ना मिला लेना चाहिए, वो या टमाटर का रस भी मिला सकते हैं आप। और ड्राई स्किन वाले न्यू जो कि मुल्तानी मिट्टी का पैक है वो कच्चा दुध मिला सकते हैं, थोड़ी जी या तो दही मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, है ना जी। सो अपने स्किन के अकॉर्डिंग पहला तो आप जो पैक बना रहे हैं मुल्तानी मिट्टी का, उस तो बाद जो आप फेस वॉश कर लिया एक बार और तौलिए नाल या किसी साफ कपड़े के नाल बिल्कुल चंगी तरह वॉश करके सुखा लिया, तो फिर आप जो मुल्तानी मिट्टी का पैक है ना वो लगा लेना। और लगाने का भी देखो एक टाइम है, जो एक लैवल पर लगाना सब तो पहला, तो यही नहीं कि मोटा हो रहा है कितने मतलब पतला लगा रखे, एक बराबर नाल जिमें पैक बना के चंगी तरह नाल जी मुल्तानी मिट्टी का पैक है वो फेस से लगाइए, तो उस तो बाद केवल 10-12 मिनट ही उन्हें रखिए, यही नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्राई एकदम सुक जाए, नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो सूँ फील होने लग गया ना कि हल्का हल्का वो ड्राई होना शुरू हो रहा है, बस उदो ही टाइम होता है कि जो इस आप वॉश कर लिए फेस न, और वॉश भी इदा नहीं करना कि बस जाइए वॉशरूम च और पानी नाल जरा कि अपना फेस धार धार धार धोना शुरू करता है, नहीं नहीं नहीं करना की है कि पहला थोड़ी जी मुल्तानी मिट्टी मतलब जो आप पैक लगा रहे हैं ना उसके उत्ते थोड़ी जी एक पहला बूंदा पानी की जड़ियाँ ड्रॉप्स ने वो पाइए, हल्का जहा जिमें स्प्रे जहा करिए, तो जो गिली हो जाएगी ना मिट्टी हल्की हल्की जी, बस मसाज करनी है उदे नाल ही, और उस तो बाद फेस जिहड़ा है अपना वॉश कर लेना है। और वॉश करन तो बाद ये याद रखना है कि कोई भी वधिया टोनर है या मॉइस्चराइजर है या कोई क्रीम जो आप यूज़ करते हैं अपने चेहरे लिए वो जरूर लगाइए, कला वॉश करन तो बाद सिर्फ ये नहीं कि बस हो गया काम, ठीक है। सो छोटे छोटे कुछ तरीके ने जिन्हां दे नाल असी सोहने सोहने लग सकते हैं, और अगला गीत भी बहुत सोहना है, याद आ गया मैनू, स्टे ट्यून्ड।

सो क्यूटी पाई स्वीटी पाई या फिर जो मर्जी हो हाय हाय पाई तो मैंने याद आया जी क्यूट क्यूट पाई पाई चीज़ा होंदिया ने बड़ी प्यारी होंदिया है ना जी। और गर्मी दी छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चों की शुरू ही हो गई हैं, बस समझ लो आ गई है दस्तक दे रही है। और इन छुट्टियों के बच्चों को भी अपने नाल लगा सकते हो कुछ ना कुछ नवा स्किल जी बहुत जरूरी है नवी कुछ चीज़ सीखना। और जड़ियाँ इंस्टेंट चीज़ा होंदिया ने उन्होंने तो मज़ा ही कुछ होर होंगे। सो अज आप इंस्टेंट मेयोनीज जी है वो बना रहे हैं और इन चीज़ों के लिए मैं तुम्हें समान भी दस दिता हूँ तक की कुछ चाहिए सगा जिमें कि काजू आप लेते सी एक कप हो गया है ना जी, नमक हो गया, पीली सरों का पाउडर हो गया, ओलिव ऑयल हो गया और सिरका भी लेता है दो चमचे और नींबू का रस है ना जी। सो हूँ करना

मुल्तानी मिट्टी के फायदे भी आप जान लिया और फेस पैक कि बना कि लगाना है ये आप कर लिया है ना जी। और अगली चीज वाल वध रही है और आई थिंक ना मैं हमेशा एक कुछ ना कुछ थोड़े लिए कुछ कह लो कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाली जी चीज़ है जिम्मे कि पिछली बार आप होम मेड फेस

सो ये जहाँ तक रंगीन ही है देखो, और एफएम रेनबो की दुनिया भी रंगीन है क्योंकि सात रंग है ना, रेनबो दे रंग और इन रंगा दे नाल बनता है जी। 102.7 एफएम रेनबो जलंधर और खुशियां का खजाना बनता लाइव रेडियो स्टेशन जलंधर। कुछ भी कह लो, रेनबो दे नाल जो दोस्त जुड़ जाते हैं उन्हां दा ही अपने ही कह लो कि मैं इस करके जुड़िया या फिर मैनू ये प्रोग्राम पसंद है या फिर मैनू कुछ भी पसंद है ना, लेकिन रेनबो सारे नूं पसंद है और रेनबो दे नाल जुड़ के अपने जिहड़े प्रोग्राम ने इंजॉय करते हैं। सो फिलहाल इस टाइम चल रहा है 1:10 और 5 सैकेंड तेरे जब थोड़े नाल जुड़ी हुई है, तो आप दोवें मिलकर इंजॉय कर रहे हैं जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़।

0: की क्या मैंने बुलाया? लगता है ना कि कह रही है आ जा, है ना? और जो तो आप किसी ने आवाज देना है, यही बुलाने है, आ जा, आ भी जा। और एफएम रेनबो में फिलहाल मैं आई हुई हूं जी, रिचा के नाल तुसी एंजॉय कर रहे हो आज मिड डे मेलोडीज और ये सफर भी है ना जी। और एक मैं हूँ, एक तू, और तुसी बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। देखो जी, जलंधर के दोस्त भी जुड़े हुए ने साढ़े नाल, अमृतसर के दोस्त भी जुड़े हुए ने, और पता नहीं कितने कितने जेडे दोस्त ने एफएम रेनबो ट्यून इन करके इस टाइम प्रोग्राम इंजॉय करे ने मेरे नाल। चलो फिर हूँ समा हो गया अगले गीत का भी, और मोहम्मद रफी जी आ रहे ने नाल ही नाल साढ़े, हाँ जी, गाने के विच स्टे ट्यून्ड।
1: Papaya, papaya, papaya!

खैर आज ना तो संडे है और ना ही मंडे है, बट फिर भी म्यूजिकली जर्नी चल रही है और अजिहे जिहड़े गीत होंदे ना वाकई मैनू तो बड़े पसंद है और मैनू लग रहा है जिन्हें भी दोस्त इस टाइम इस गीत सुन रहे हैं और संगीत का जिहड़ा सिलसिला चल रहा है जी FM रेनबो ते सो वधिया लगता है ना। और इस गीत के जरिए ही सही चलो थोड़ी जी फीलिंग आपां भी लै लैने कि संडे बहुत नज़दीक है और संडे नू भी मिलांगी तुहानू मैं। फिलहाल मिल रही हाँ जी इतें ही इस टाइम स्टूडियो के रिचा के नाल तुसीं कर रहे हो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ इंजॉय। स्टे ट्यून्ड।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हो।

0: क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइप्रस अगले 5 साल में निवेश प्रवाह नूं दुबारा दुगना करने का टीचा रखते हैं। उन्हें इस गल्ल ते जोर दिता कि साइप्रस नाल रक्षा सहयोग भी वध्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोवां देशों ने साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा ते दहशतगर्दी विरोधी खेतरां विच सहयोग वधाउण दा भी फैसला किया है। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग 26 मई को नवी दिल्ली होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सदे से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटोगी और अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मीटिंग में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र ते खुले हिंद प्रशांत खेतर लई क्वाड दे दृष्टिकोण मुताबिक क्वाड विदेश मंत्री तरजीही खेतरां विच सहयोग वधाउण ते क्वाड पहलकदमियां ते प्रगति दा जायजा लैण ते चर्चा करनगे। हिंद प्रशांत खेतर विच हालिया गतिविधियां ते होर अंतरराष्ट्रीय मुद्दयां ते भी चर्चा कीती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान अते अमरीका दे विदेश मंत्रियां दे दुवल्ले मीटिंगां करन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करन दी भी उम्मीद है। चोन कमिशन ने अज 10 राज्यों तो राज्यसभा दीआं 24 सीटां लई 2 साल च होण वालीआं चोणां लई चोण प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। साबका प्रधानमंत्री एसटी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन अते रवनीत सिंह अगले महीने अपना कार्यकाल पूरा कर रहे मैंबरां विच शामिल ने। आंध्र प्रदेश, गुजरात ते कर्नाटका विच 4-4 सीटां, राजस्थान ते मध्य प्रदेश विच 3-3 सीटां, झारखंड विच 2 सीटां अते मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ते मिजोरम विच 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमिशन मुताबिक नोटिफिकेशन अगले महीने की 1 तरीक नूं जारी किया जाएगा ते 18 जून नूं वोटिंग होगी। वोटां की गिणती उसे दिन की जाएगी। कमिशन ने महाराष्ट्र ते तमिलनाडु विच 1-1 सीट लई राज्यसभा जिमनी चोणां दा भी ऐलान किया। ये सीटां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार अते AIADM के दे संसद मेंबर CV शनमुगम वल्लों खाली कीतियां गईयां ने, जो हाल ही विच राज विधानसभा लई चुने गए ने। जिमनी चोण भी अगले महीने दी 18 तरीक नूं होएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सरहदां दी सुरक्षा नूं चुनौतियां नाल निजिठण लई एक व्यापक खेतरी जिम्मेवारी वजों देखिया जाना चाहीदा है। अज नवी दिल्ली में सरहदी सुरक्षा बल BSF के सम्मान समारोह को संबोधन करदे श्री शाह ने कहा कि कई कमजोरियां ते चुनौतियां के बावजूद बल ने देश के माण नूं लगातार बनाई रखा है। श्री शाह ने उभर रहे सुरक्षा खतरा का हवाला दिता, जिन्हों विच गैर कानूनी घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली करंसी का चलन, हथियारों ते नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है। गृहमंत्री ने वधेरे एकीकृत अते व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत ते जोर दिता। उन्होंने राज पुलिस, केंद्रीय हथियारबंद बलों, खुफिया एजेंसियां ते स्थानक प्रशासन दरम्यान बेहतर तालमेल लई किया।
2: पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई, और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य सैंड BSF ने पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है।
1: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNewsਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੌਰਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਫ ਮਾਰਕਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 300 Gmail ਖਾਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 219 ਖਾਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
3: ਬੌਮ ਥਰੈਟ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੌਰਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਏਲੀਅਸ ਮਾਈਕਲ, ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਇਹਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਮੇਲ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ

0: यार सच दसा हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7,000 रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया है। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, ओह आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही देना। जदों बिजली मुफ्त मिलदी है तां लै के नहीं रहे वीर, तुसीं भी लगा ही दिओ।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Once again, welcome back, Aji. 102.7 MHz ते आकाशवाणी ते जलंधर ते दोस्त सारे नाल जुड़े हुए ने और नाल ही नाल 103.6 MHz ते आकाशवाणी अमृतसर ते दोस्त VS Time सारे नाल जुड़े हुए ने जो कि दोपहर दे 3 बजे तक जुड़े रहेंगे। और 51:52 ते 12 सेकंड ते जा रही है जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़।

0: बसा दे तो।
1: दिल तो वैसे बसाया ही होया है, लगाया ही होया है जनाब, FM रेनबो दे नाल ताही ता प्रोग्राम विद मेलोडी इस टाइम तुसी कर रहे से एंजॉय मेरी यानी रिचा दे नाल। और रिचा नु फिलहाल आज दे दिन दे इजाजत, मिलांगी बहुत जल्दी थोड़े नाल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ते जानकारी लेके एक बारी फिर अपना पिटारा चक के आ जाऊंगी। लेकिन आज दे दिन फिलहाल मिलूं दियो इजाजत ते जांदे जांदे प्रोग्राम विद मेलोडीज दा बिल्कुल लास्ट वाला गीत किशोर कुमार दी आवाज़ च। स्टे ट्यून्ड।

0: हाथ लेके हाथ में तू साथी बन जा, दुनिया के गम को तू दिल से भुला।
1: ये जिंदगी हसीन है झूम झूम जा, खुशियां मना ले गुनगुना।

खुशियां मना ले गुनगुना तू मुस्कुरा, हाथ लेके हाथ में तू शादी बन जा, दुनिया के गम को तू दिल से भुला, जिंदगी हसीन है तुम जा, खुशियां मना ले गुनगुना।

चांद को देखकर तुझे हर रोज़ याद करते हैं, चांद को देखकर तुझे हर रोज़ याद करते हैं, तेरी अहमियत को अपने जज्बातों में बयां करते हैं। तारों से पूछो मोहब्बत आखिर क्या होती है, तारों से पूछो मोहब्बत आखिर क्या होती है, जो खुद टूटकर भी दूसरों की ख्वाहिशें मुकम्मल करते हैं। जी हाँ, इस अनुपेजी से गगनप्रीत कौर होना ने टांडा तो। सो इसी दे नाल सानू होर भी बहुत सारियां शायरी जड़ियां पहुँच चुकी हुई ने। कहंदे ने मंजिल की तलाश में सफ़र में हम सफ़र मिल जाते हैं, मंजिल की तलाश में सफ़र में हम सफ़र मिल जाते हैं, और फिर वही हम सब पर मंजिल बन जाते हैं। इस अनुपेजी से अर्जुन सिंह, हरविंदर सिंह, रूप राय पिंड माले वाला फिरोजपुर दो। एक होर सानू शायर भेजते हैं। देखो मैं तो सारे शायर ही कहनी हाँ, जेडे भी साडे लिसनर सानू शायरी लिख के भेजते हैं वो साडे इस प्रोग्राम के शायर ही होंदे हैं। सो अगले जेडे साडे लिसनर ने मतलब कि शायर वो लिखते हैं कि जिंदगी दे विच बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी दे विच बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार प्यार च प्यारा नहीं मिलता, जे कोल है उनू संभाल के रखो, कोई एक खो जावे तो दोबारा नहीं मिलता। ये पेजी सानू लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार होना ने

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

कि जिनसे शिकायत, जिनसे माफ़ कीजिएगा, जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बेकार है, जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बेकार है, हमें उनसे शिकायत है, उन्हें हमसे शिकायत है, अब तो ऐसा लगता है कि शिकायत को भी शिकायत है। वाह जी वाह, क्या खूब खूब लिखा है जी। ईसन पीजी से शायरी बलविंदर सरा पिंड मोर जन सिखा हनुमानगढ़ तो बहुत खूबसूरत एहसास ने कि एक नू साढ़े तो शिकायत है, सानू उन्हां तो शिकायत है, तो हुण इदां ही लगता है कि शिकायत तू भी साढ़े तो शिकायत हो चुकी है। होर भी सानू भेजी असी बहुत सारी शायरी, कहिंदे ने जिथे दिल दा रोला होवे उत्थे बंदा ना भोला होवे, जिथे दिल दा रोला होवे उत्थे बंदा ना भोला होवे, लोकी बेच के खा जांदे ने भावे मासा जा फिर तोला होवे, जिथे मतलब भारी होवे उस सज्जन नाल ना यारी होवे, पल विच रिश्ते तोड़ जांदे ने भावे सांझ साला पुरानी होवे। बिल्कुल सही क्या, ये दुनिया मतलब दी ताई कहंदे ने, क्योंकि रिश्ते उदों नहीं देखे जाते जो किसी ने रिश्ता तोड़ना होंगे, उदों साल पुराने रिश्ते भी झट टुट जाते हैं। ये सानू भेजी सी गुरविंदर जोरा, परमजीत जोरा, डॉक्टर रणजीत जोरा उन्होंने तरन तारण तो। इस नाल ये सिलसिला लगातार जारी है, होर भी सानू बहुत सारिया शायरी जिहड़ियां ने पहुँच रही ने। कहंदे ने इत्थे कोई किसी का बनता नहीं, तू बना के देख लै, इत्थे कोई किसी का बनता नहीं, तू बना के देख लै, अखीर नू पागल कह तुल जाणगे, तू किसी दी खातिर भावें खुद नू सूली चढ़ा के देख लै। क्या बात है जी, बिल्कुल सही क्या। ये सानू भेजी सी पाली होना ने, लिखी है राज नसराला होना ने। सानू लगातार ये सिलसिला चल रहा जी, लगातार सानू शायरी पहुँच रही है। मैं सब की शायरी वारी वारी सिर पढ़ांगी जी, कित नहीं जाती मैं अज थोड़ी शायरी पढ़े बिना, सब दी शायरी पढ़ के जाऊँगी जी, अपनिया भी हाजिर करांगी, ते नाल दी नाल कुछ जो कवि ने कवित्रियाँ ने या जो साडे शायर ने उन्हां दी भी शायरी पेश करूँगी। जिवें कि जॉन एलिया होना कहिंदे ने, खामोशी से अदा हो रही है रस्म मोहब्बत, खामोशी से अदा हो रही है रस्म मोहब्बत, ना उसने शिकवा किया ना हमने किला किया। मतलब यह है कि साडे विच मोहब्बत दा रिश्ता ना हुण पूरी तरह खामोश हो गया, ना उन्हूं कोई शिकायत रही है साडे तो, ना ही सानू उन्हां तो कोई शिकायत है, ते हुण दोनों दे विच एक दूसरे दे विच दूरी तो सिवा हुण कुछ भी नहीं है। इस शायरी का मतलब सीगा, सो शिकायतां देखो बहुत सारियाँ चलदियाँ रहनियाँ जिंदगी च, ते मैनूं तुहाडे तों कोई शिकायत नहीं होएगी, पर एक शिकायत जरूर हो सकती है जे तुसीं मैनूं शायरी नहीं भेजी। तां प्रोग्राम चल रहा दिल आज शायर है, मैं हाँ तुहाडी आज दो सुरभी, नंबर मैं अनाउंस कर देनी हाँ व्हाट्सएप वाला 9855 9855 1010027, ये साडा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर ते जल्दी जल्दी मैनूं शायरी भेजो जी। नाल दी नाल मैं प्ले कर रही हाँ जी बहुत ब्यूटीफुल जे ट्रैक, खास तौर पर प्यारियां प्यारियां गज़लां। ये सिलसिला इसी तरीके चलता रहेगा, तुसी किते नहीं जाना, बस तुसी साडे नाल जुड़े रहना है, और अज तुसी शायर बन के अपने दिल के जज्बात साडे नाल शेयर करते रहने, गज़लां सानू भेजते, सॉरी गज़लां कहता सानू अपनी शायरी भेजते रहना है जी। बस इस गज़ल नू प्ले करके मुड़ के आते हैं जी, मुड़ के आके देखते हैं कि किन्ने होर शायर मेरे नाल जुड़े ने।

शिकवा तो है बहुत मगर किससे गिला करें, शिकवा तो है बहुत मगर किससे गिला करें, तू भी बदल गया ज़माने की तरह। अहमद फराज होना ने ये बहुत प्यारी शायरी लिखी है, कहते हैं कि दिल में शिकायतों तो बहुत हैं लेकिन अब किससे शिकायत करो। जिसे वक्त के साथ पूरी दुनिया बदल जाती है, वैसे ही अब तुम भी पूरी तरह बदल गए हो। लो जी, सानू एक होर शायरी पहुंच चुकी है। कहंदे ने तुम गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खा ले, चलो बस हो गया मिलना, ना तुम खा ले ना हम खा ले। वाजी वाह, क्या बात है जी, बहुत खूब है। ये सानू भेजी सी राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिलियाँ सुल्तानपुर लोती होना, तो सानू ये भेज रहे से शहरी जिथे इन्होंने बड़ा खूब किया है कि चलो कि तुहानू की गहरा तो फुर्सत ना सी खा लिया, इस करके इत्थे सिलसिले खत्म कर दो, ना तू खा ली ते ना मैं खा ली। लिखते ने चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं, चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं, पुराने दर्द से खुद को आज़ाद करते हैं, जो टूट गया उसे किस्मत मान लेते हैं, अब खुद से फिर एक बार मुलाकात करते हैं, थोड़ी मुस्कान थोड़े सपने सजाएंगे, गिरे थे जहां वहीं से उठ जाएंगे, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, अब थोड़ा तुम मुझे समझाना और धीरे धीरे हम तुम्हें समझा जाएंगे। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੋਨੂ ਮਲੇਰਕੋਟ ਨਾਲ ਤੋਂ। ਸੋਨੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੇਜੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਭੀ ਬੈਠ ਕਰ ਖੁਦ ਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਭੀ ਬੈਠ ਕਰ ਖੁਦ ਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਵੋ ਸੱਚ ਮੇਂ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ, या फिर तुम सिर्फ उन लोगों की उम्मीदों का बोझ उठा रहे हो जिन्हें कभी तुम्हारे दर्द से फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी खुशी के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों को खुश रखने के लिए धीरे धीरे खुद को ख़त्म करते रहते हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि एक दिन ऐसा आता है जब इंसान आईने में खुद को देख कर भी खुद की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए दुनिया की सोच बदलने से पहले खुद को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बचाना सीख लीजिए, क्योंकि अगर तुम अंदर से टूट गए ना तो कोई तुम्हें संभालने नहीं आएगा। ये गल तो बिल्कुल सही की है जी, क्योंकि कई बार असी दूसरियां दे लई अपना सब कुछ कुर्बान कर देने हैं ते अपने आप नूं भुल जाने पूरे तरीके दे नाल। इस करके कई बार फिर अपने आप नूं भुलन तो बाद बड़ी देर बाद एहसास हुंदा है कि जो असी कर रहे सी किसी लई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸੱਫਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਮਾਨ ਪੇਂਟ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕੰਦੋਲਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹੋਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਟੇਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੂੰ ਉਧਰ ਮੁਝੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀਏ, मैं जिधर देखूं उधर मुझे तू चाहिए, हर तरफ फक्त तेरी जुस्तजू चाहिए, खुदा से परे अगर कुछ है तो वो तुम हो, तू नहीं जिसमें फिर ना वो आरजू चाहिए। क्या बात है जी, बस एको एक चीज़ चाहिए और उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। बहुत वधिया लिखा, बहुत खूब है। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਿਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਿਸਨਰ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। 9855101027 9855101027 ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ

कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज़्यादा खास होता है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज़्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। जी हाँ, सानू पीजी सी इकबाल सिंह चौहान होना ने अमृतसर तो इस नाल होर बहुत सारियाँ सानू प्यारी प्यारी शायरी पहुँच रही है जी। प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है, मैं हाँ थोड़ी आ जी दोस्त सुरभि, और प्रोग्राम विच अगली शायरी सानू जिन्होंने भेजी है वो कह रहे ने कि जिंदा रहे बापू जो पगौंदा हर हिंड नू, पोरा ना फिकर इस निकी जही चिंद नू। सही गल है, बापू साढ़े जिंदगी बहुत कुछ करता है ते साढ़े लिए सारी जान वार देंदा है, तो सानूं कई बार पता ही नहीं चलता कि साढ़े माँ बाप साढ़े लिए की कुछ कर जाते हैं। ये सानूं भेजी सी दिलप्रीत सिंह इटली तो, ते उन्होंने सानूं ये लिख के भेजी है। उन्होंने नाल ये भी लिख दिता कि सानूं ये पंक्तियाँ याद सीगियाँ, किसी ने बहुत वधिया लिखिया सी पर सानूं शायर साहब का नाम याद नहीं है। चलो कोई गल नहीं जी, बट ये पंक्तियाँ जिन्हें भी शायर ने लिखिया ने बहुत सोहनिया लिखिया ने। लो जी, अगले भी शायर साढ़े नाल जुड़ चुके ने, यानी कि साढ़े लिसनर कहते ने जिंदगी ते मौत भी है पर आखिरी लड़ाई है, अज मैनू फिर तेरी याद आई है। ये सानू भेजी है सुखदीप सिंह तिमान, पिंड बडाली नेड़े कुराली शहर जिला रोपड़ तो। जो शिकायतें याद आउंदियां ने तो उदों वो भी याद आने लग जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा सी दिल आज शायर है और प्रोग्राम का समा जेड़ा है वो हौली हौली ख़त्म होता जा रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और बड़ा चंगा लग गया आज मेरे नाल बहुत सारे नवे लिसनर भी जुड़े, उन्होंने अपनियां शायरी मैनू भेजिया, दिल के जज्बात मेरे नाल शेयर किए। इस नाल आखिरी जो शायरी पेश कर जा रही हूँ मैं, साडे लिसनर ने सानू भेजी है कि जिंदगी आराम से फुटपाथ पर सोती रहे, ज़िंदगी आराम से फुटपाथ पर सोती रही, एक गुड़िया कुछ खिलौनों के लिए रोती रही। सानू भेजी सी सुभाष चंद्र वत्स गिदड़बाहा ने ये ब्यूटीफुल जी शायरी। सो जिंदगी इसी का नाम है जी, कितने एक पासे लोग शिकायत करते हैं तो दूसरे पासे लोग बिना शिकायत तो बहुत खुश रहते हैं। जाते जाते दो लाइना मैं भी कहना चाहूँगी कि दिल साफ होवे तो नाराज़गी भी प्यारी लगती है, दिल साफ होवे तो नाराज़गी भी प्यारी लगती है, पर जिथे मतलब आ जावे ना उत्थे शिकायत भी फिर बेकार लगती है। इस नाल तुहानू पता होएगा कि कुछ गल्लां दा जवाब ना सिर्फ खामोशी हुंदी है ते कुछ शिकवे जिहड़े हुंदे ना उम्र भर दिल विच ही रह जांदे ने, ते इन्हां शिकवे दे नाल असीं अपनी जिंदगी कई वार कढ दिंदे ने। कई वार साडी शिकायत इन्नियां लंबियां हो जांदियां ने कि आपां कहिंदे कदी मुक नहीं सकदियां। दोस्तों, शिकायत रखनी बुरी गल नहीं है, पर दिल विच बोझ रखना जरूर बुरी गल है। कोशिश करो गल करन दी, समझन दी, ते कई बार छड़ देन दी भी। मैं हाँ तुहाडे नाल ते तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम दिल आज शायर है। मैं हाँ जी तुहाडी दोस्त आज सुरभी, मिलांगी फिर एक नवे जज्बात दे नाल। उन्नी देर तुसी अपना ध्यान रखना है जी, जाना किते नहीं है जी, पूरे 3 बजे प्रोग्राम आना है जी रेडियो डॉक्टर। तुहाडी सेहत नाल जुड़िया होया एक खास प्रोग्राम जो तुहानू हमेशा हैल्थी रहने दे टिप्स देता रहिंदा है, इनू भी जरूर सुन के जाना है। तो उस तो बाद पूरे 4 बजे तुहाडी दोस्त फिर तो आएगी जी लैके प्रोग्राम हैलो जलंधर। फिलहाल दिल आज शायर प्रोग्राम का समा इत्थे समाप्त हो चुका है। हुण दे लई मैं तुहानू इजाजत चाहुंदी हाँ, उन दिन नू अपना ध्यान रखियो, तो हसते मुस्कुराते रहो, तो ज़्यादा शिकायतां दिल च नहीं रखनियाँ। तो जाते जाते हाँ, मेरे नाल भी कोई शिकायत नहीं रखियो, ठीक है जी। मैं तो तुहाडी दोस्त हाँ ना, मैं तो अपनी हाँ। चलो जी, हूँ पेश कर जा रही हूँ इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक, मिलेंगे जी पूरे 4 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर, और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। आज का विषय है सिर की चोट, कारण, उपचार और बचाव, यानी हेड इंजरीज, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सिर पर लगी चोट कभी मामूली लग सकती है, लेकिन कई बार ये गंभीर रूप भी ले सकती है। गिरने, सड़क दुर्घटना, खेलकूद या किसी अचानक हादसे में सिर की चोट आम बात है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी होता है। आज हम जानेंगे कि सिर की चोट कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इससे बचाव कैसे संभव है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, यशोदा मेडिसिटी, न्यू दिल्ली। आप इससे पहले लगभग 3 दशक तक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स, न्यू दिल्ली भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी।
2: हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर की चोट यानी हेड इंजरीज, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिर की चोट, हेड इंजरी, किस किस प्रकार की हो सकती है।
3: सबसे पहले तो मैं फिर से शिल्पा जी आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अपने सारे श्रोतागण को भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने पूछा हेड इंजरी क्या होती है। हम इसे दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक साधारण भाषा में और हम दूसरी मेडिकल भाषा में हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं। साधारण भाषा में कोई भी चोट जब सिर में लगती है, चाहे वो स्कैल्प में हो या कि बाहरी परत होती है, या फिर स्कल में हो या फिर अंदर ब्रेन में हो, तो कोई भी चोट इसमें लगती है तो हम इसे कह सकते हैं कि हेड इंजरी का कंपोनेंट है। मेडिकल भाषा में हम इसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा है, मात्रा कितनी गहरी है, इस हिसाब से हम इन्हें डिवाइड करते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, अक्सर हेड इंजरीज के केसेस का आमतौर पर क्या आंकड़ा रहता है और कौन कौन से एज ग्रुप या सिचुएशंस में ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं।
3: ये प्रश्न बहुत जरूरी है। ये प्रश्न इसलिए जरूरी है, जब तक हमें हमारे देश में हेड इंजरी के प्रॉब्लम के बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इसके आंकड़े के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सच में

0: देखा जाए तो हमारे देश में, दुनिया में जितने भी ज़्यादा हेड इंजरी एक्सीडेंट्स होती हैं, डेथ्स होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में, हमारे भारत में होती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एपिडेमिक है, एक तरीके की महामारी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखा गया है कि हर साल हमारे देश में लगभग 15 से 20 लाख लोग हेड इंजरी से ग्रसित होते हैं, और इस 15 से 20 लाख के आंकड़े को अगर हम फर्दर डिसेक्ट करें तो हम देखते हैं कि हर रोज लगभग 4000 हेड इंजरीज होती हैं, हर घंटे 2000 और हर मिनट 3 हेड इंजरीज होती हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको हैरानी होगी कि इस वक्त 3 हेड इंजरीज हो चुके हैं, और दुख की बात यह है कि हर साल इस हेड इंजरी की मात्रा हमारे देश में 6-8% बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की महामारी है। प्रॉब्लम यह है कि ये हेड इंजरी किन में होती है? ये हेड इंजरी अक्सर यंग एज 20-40 साल के नौजवानों और नवयुवतियों में होती है। तो इस वजह से ये एक ऐसे प्रोडक्टिव एज होती है जहां पर हेड इंजरी की वजह से ना केवल वो इंसान बल्कि उसका पूरा फैमिली अफेक्ट होता है। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो लगभग एक साल में 2 लाख के आसपास हेड इंजरीज से डेथ होती हैं, और हर दिन लगभग 400 डेथ्स होती हैं। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हेड इंजरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे देश में सबसे ज्यादा है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये यंग एज में या इसमें ज्यादा होती हैं, लेकिन इसके क्या कारण है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैं विजय बोल रहा हूँ, दिल्ली से।
1: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: सर नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: सर ये जैसे कोई कुश्ती में या बॉक्सिंग में सर जैसे लग जाते हैं मुक्के उक्के, जैसे कंकशन सा हो जाता है,
0: बिल्कुल,
2: तो सर ये कितना खतरनाक है और कितने समय के बाद हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए?
0: अच्छा, आपने बताया आपका नाम विजय है।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: आप बॉक्सर हैं?
2: सर खेलता हूँ मैं कुश्ती।
0: अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जितने भी हमारी गेम्स होती हैं, खासकर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में हेड इंजरी बहुत कॉमन चीज है। आपने सुना होगा मोहम्मद अली के बारे में, है ना, बहुत अच्छे बॉक्सर थे। तो अपनी सारी लाइफ उन्होंने बॉक्सिंग करी, बाद में उन्हें पार्किंसन डिजीज हो गई थी। होता क्या था कि बॉक्सिंग में आप सब जानते हैं उस टाइम लोग बिना किसी स्पोर्टिंग और सेफ्टी गियर के बॉक्सिंग करते थे, तो सिर में लगातार चोट लगा करती थी। तो उस चोट के लगते लगते, बार बार लगते लगते उन्हें दिमाग के कुछ पोर्शन में डैमेज हो गई, और उसकी वजह से उन्हें पार्किंसन की डिजीज हो गई। तो ये ज़रूरी है कि जब हम बॉक्सिंग करते हैं या कोई भी ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स करते हैं तो जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं वो ज़रूर पहने, और अगर चोट लगती है तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे कि जिसकी वजह से चलते हमें केयरफुल रहना चाहिए, और जरूरत पड़े तो एक मेडिकल हेल्प और कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, हम कैसे पहचाने अगर हम चाहे ड्राइव कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चोट लग गई है, तो हम कैसे पहचाने कि ये चोट सामान्य है या गंभीर है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
0: हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर चोट लग जाती है, घर में बैठे हैं, सिर किसी कोने से लग गई, अब क्या करें, या फिर मान लीजिए कोई गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई बाइक चला रहे हैं या कोई भी ऐसे साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस चोट में कौन सी चोट ऐसी होती है जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, और हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हमें मेडिकल ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए, कोई भी चोट लगती है, उस चोट लगने के बाद अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज करता है, बेहोश हो जाता है, चोट के पश्चात वोमिटिंग्स होती हैं, या चोट लगने के बाद दौरे पड़ते हैं, या चोट लगने के बाद काफ़ी देर तक, लगभग आधा घंटा तक इंसान को होश में नहीं रहता, उसकी याददाश्त नहीं रहती कि क्या हो गया था मुझे, या चोट लगने के बाद शरीर के किसी अंगों में किसी तरीके की कमजोरी जिसे हम फोकल डेफिसिट्स कहते हैं, या फिर मान लीजिए नाक से CSF हम कहते हैं, ब्रेन का एक वाटरी फ्लूइड लीक करता है, या फिर सीवियर ट्रॉमा लगी है चेहरे में, फेस में, और किसी पेशेंट में अगर जिसे हम प्यूपिल्स कहते हैं वहाँ पर एसिमेट्री आती है, या कोई पेशेंट चोट लगने के आधे घंटे बाद भी होश में नहीं आता है, तो अच्छा है कि किसी मेडिकल कंसल्टेंट से या किसी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह कर लें।
1: इसके बारे में हम आगे भी और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये गाना रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ये हमें मैसेज देता है कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़े। और ये सॉन्ग आज का हमारे डॉक्टर साहब अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं, उनकी पसंद का है ये गाना। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
1: हेलो।
2: हाँ,
0: नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: तो पहले तो एंकर मैम को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और राजेंद्र कुमार डॉक्टर साहब को, राजेंद्र सिंह का नमस्कार।
2: अच्छा, आप भी राजेंद्र हैं? नमस्कार जी।
1: जी सर, इत्तेफाक से मेरा नाम भी राजेंद्र है सर।
2: अच्छा।
1: तो सर, मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे प्लीज, कि किसी पेशेंट को या शख्स को कैसे पता चले कि उसे ब्रेन फीवर है, ब्रेन फॉग है, या उसके दिमाग तक जो है ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि मेरे इन दिनों मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे फ्रिज कूलिंग मांगता है ना, उस तरीके से अगर मैं फ्रिज सिर को ठंडे पानी से धोऊं, आंखों, हाथ, मुंह को, या ठंडा कपड़ा सिर पे बांध लूं, तो दिमाग काम करता है, और अगर वो कपड़ा सूख जाए तो फिर पानी सूख जाए, फिर वही प्रॉब्लम हो जा रही है। क्योंकि मुझे इन दिनों स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। एक सवाल तो मेरा ये है, 89-90 में मेरी बाई आंख, वो सॉरी, किसी फ्रेंड ने मेरे बाई आंख के ऊपर जो है वो मार दिया था 16 पाउंड का गोला। उस वक्त जो है वो वहां पर एक गोला टाइप का बन गया था, पर तब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम में बाई आंख पे बॉल लगी, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 2004-05 मेरी सिर के पीछे वाले भाग में एक बॉल आके लगी, रोहनी में कहीं खड़ा था किसी टीचर के साथ अपने, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। तो मैं जाना चाह रहा हूँ कि पुरानी चोट उभर के आई है या कुछ हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी सर।
2: अच्छा, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। एक तो आपने कहा कि कुछ ब्रेन फीवर या ब्रेन फॉग है ना, तो आपके ब्रेन में ब्लड पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, तो देखिए ये जो आप

0: जो चीज़ें पूछ रहे हैं इसको हम पूरे डिटेल में तो नहीं समझ सकते इतने से छोटे से वार्तालाप में, लेकिन जहाँ तक ब्रेन में ब्लड पहुँचने की बात है इसमें आप निश्चिंत रहिए, जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ना केवल आपके ब्रेन में ब्लड जा रही है बल्कि आप हर चीज़ सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ब्रेन फॉग कभी कभी ऐसे कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए इस वक्त मान लीजिए हम हेड इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं तो चोट लग गई सिर में, तो एक तरीके से जैसे कनकशन बोलते हैं, जैसे पहले श्रोता ने कहा था थोड़ी देर के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सिर में दिन में तारे नजर आ गए, अचानक से आपके ब्रेन का सोचना आपका फंक्शन करना थोड़ी देर के लिए स्टन हो गया, आपको याद नहीं रहता कुछ, तो उस तरीके की चीज़ों को हम फिलहाल एक तरीके से ब्रेन फॉग कह सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अपने आप नॉर्मल आ जाती है। तो ब्रेन फीवर वाली ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ब्रेन फीवर टोटली अलग कंडीशन होती है। आपको अगर सिर में आप कहते हैं कि ठंडे पानी से कपड़ा या कोई टाइट बांधे तो कुछ फ़ायदा होता है, कुछ ठीक लगता है, तो हो सकता है आपको कोई ब्लड प्रेशर या कोई इससे ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार किसी डॉक्टर से बात करके उनसे कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेशन या जांच जो भी कर लेते हैं वो करवा लीजिए। और रही बात आपकी कोई बहुत पुरानी इंजरी जो आई के आसपास हिट हुई थी या सिर में लगी थी, उससे इतने टाइम बाद कोई ऐसी कोई वजह जनरली होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई चोट लगी हो रिसेंट में कुछ हफ्ते या 1-2 या 3 महीने पहले चोट लगी हो, फिर उसके बाद आपको ये तकलीफें हो या किसी भी पेशेंट को, तो एक कंडीशन होती है कि ब्रेन के अंदर सबड्यूरल हेमरेज होती है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ब्लड कलेक्ट होता है, और जब उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इस तरीके की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी हालत में आप एक बार डॉक्टर के साथ किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, वो देखेंगे कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़े। ठीक है
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी हमारे पास, ये है सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, लिखते हैं सर नमस्कार जी, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जी, हमारे जानने वाले 2011 से कोमा में है, सर उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो गया है, क्या उम्मीद है उनका कुछ हो सकता है, सब जगह दिखा चुके हैं। और फिर आगे लिखते हैं सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का आपका।
0: सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शायद सहानुभूति कहूँ, मुझे हिंदी बहुत तरीके से मालूम नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। हम न्यूरोसर्जन्स अक्सर ऐसे कंडीशंस देखते हैं जहाँ पर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यंग नौजवान लड़के 20 30 40 साल के लड़के, उनके जब एक्सीडेंट हो जाती है तो ना केवल वो फैमिली, ना केवल वो पेशेंट, बल्कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, बच्चे और जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, सभी को बहुत बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। अब रही बात 2011 की इंजरी है, तब से लेके अगर वो कोमा में है, तो कोमा हालांकि मैं एग्जैक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि कोमा एग्जैक्टली क्या है, हम मेडिकल टर्म में अलग अलग तरीके से इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, पर मैं समझता हूँ कि शायद अभी भी उन्हें केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे हालत में पेशेंट को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 2007 में जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह हैं, उनके सुपुत्र का ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने इतना महान कार्य किया कि इस तरीके से जिन भी पेशेंट्स को हेड इंजरी होती है और उसके बाद उन्हें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो इन सब पेशेंट्स के लिए उन्होंने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे जोधपुर में है, हमारे दिल्ली में भी है, लाजपत नगर में, नोएडा में है, पटना में है, और ऐसे कई तमाम सेंटर्स में उन्होंने ऐसे सेंटर्स खोले हैं जहां पर ऐसे पेशेंट्स को जिनको न्यूरो रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है चोट लगने के बाद, जो कोमा या सेमी कोमा में होते हैं, या जिनको इस तरीके से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, तो उनको केयर करने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार अगर आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आप नोएडा में हैं तो नोएडा में भी ये फैसिलिटी है, इधर से हमारे लाजपत नगर में भी ये फैसिलिटी है, तो उस फैसिलिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और वहाँ पर एक बार न्यूरोसर्जन पूरे डिटेल्स से देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या उन्हें किस तरीके से रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: मैं एक सवाल पूछना सर ना
0: जी।
2: अक्सर मरीज को कोमे में जाने की स्थिति कब आती है सर? अब मैं एम्स में जब आपके लोग हर हर

0: जो है प्रेजेंट करते हैं ना,
1: जी,
0: तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कई बार सन 98 में, सन 98 में मैं एम्स में कई बार गया, तो वहाँ सीढ़ी में भी चढ़ने में भी मतलब इतना भीड़ हो जाती थी,
1: जी
0: और
1: जी
0: लिफ्ट में भी इतना भीड़ हो जाती थी। लेकिन अब स्थिति क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है यह हर दिन अच्छा चल रहा है, बढ़िया है।
1: जी
0: लेकिन मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ ना कि
1: हाँ जी,
0: कोमे में जाने की स्थिति कब होती है सर, बस यही पूछना है।
1: सबसे पहले तो रघुवीर जी धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।
0: जी सर,
1: आप उत्तराखंड से हैं तो मैं, अगर आप बुरा ना माने तो पहाड़ी कह सकता हूँ।
0: हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं,
1: बिल्कुल अच्छी बात है,
0: मैं
1: मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं हिमाचल से हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ,
0: थैंक यू सर,
1: तो मैं
0: थैंक यू
1: लगभग 3 दशक तक एम्स में रहा, तो अच्छा लगता है। तो रही बात कोमा की, देखिए
0: कोमा में
1: जब भी
0: जाने
1: सिर में
0: की।
1: चोट लगती है तो कितनी सीरियस और सीवियर इंजरी भी है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कोमा में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा, सिर में सबसे बाहर स्किन होती है, फिर उसके नीचे हड्डी होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, फिर उसके अंदर कुछ ब्रेन के बाहर कुछ परतें होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो सबसे अंदर ब्रेन होता है, तो सबसे अंदर ब्रेन का भी कुछ पोर्शन जो सबसे डीप होता है, जब उनमें डैमेज होती है या उनमें चोट लगती है या उनमें दबाव होता है, तब पेशेंट जो है बेहोश होता है। और वो दबाव बहुत लंबे टाइम तक रहा हो, डैमेज हो गया हो परमानेंट, तब पेशेंट कोमा में जाता है। तो
0: तो
1: कोमा जो
0: कोमा
1: है
0: में सर
1: सबसे,
0: वो मशीन अपने आप काम करता है डॉक्टर साहब,
1: कौन सी मशीन?
0: जो कोमा में जो डालते हैं मरीज को, तो अपने आप काम
1: अच्छा,
0: करता है?
1: आप वेंटिलेटर की बात करते हैं?
0: नहीं, जब हम कोमा में डालते हैं मरीज को, अपने आप काम करता है वो, मतलब
2: मतलब जो वो कोमा में जिसने ड्यूरेशन के लिए है, तो वो कैसे चल रहा है, मतलब कैसे जितनी देर सरवाइव कर रहा है?
1: आपका मतलब कोई मरीज कोमा में चला गया तो उसके अंदर की मशीन कैसे चलती है, ये कहना चाहते हैं?
0: बस मतलब अपने आप, मतलब उसको इम्प्रूव करता है, मतलब अपने आप ही
1: हाँ
0: करता है मशीन
1: हाँ
0: इम्प्रूव।
1: तो जो उस इंसान का जो अंदर की कुछ मैकेनिज्म्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को कंट्रोल में रखती हैं, उन्हें अलाइव रखती हैं। लेकिन इंजरी कितनी भी है वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार इंजरी इतनी गहरी होती है कि हमें पेशेंट्स को बाहर से, चाहे उन्हें सांस लेने की हो, चाहे कोई दवा की हो, ब्लड प्रेशर की ज़रूरत हो, सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमें मान लीजिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर इन सब की ज़रूरत पड़ती है, हमें देना पड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत सीरियस इंजरी है। लेकिन कोई इंसान अगर मान लीजिए बिना किसी सपोर्ट के अपने बेसिक लाइफ को कंट्रोल कर सकता, सपोर्ट में रख सकता है, तो वो सीवियरिटी इंजरी की थोड़ी कम होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि लगभग आप ये सोचे कि 6 महीने से लगकर 2 साल तक कुछ ना कुछ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की आशा हमेशा रहती है।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हेड इंजरीज कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो इस पर अभी हम आपसे जानेंगे कि इसके सबसे सामान्य कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: श्याम सुंदर ग्राम जिलंधर।
2: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार, और 77
2: अच्छा जी
3: उम्र, 8 साल से मैं पार्किंसन की दवाई ले रहा हूँ।
2: सर आपकी आवाज है ना कट रही है, तो आप
1: पार्किंसन की दवाई ले रहे हैं?
3: पार्किंसन की बोल रहे, मुझे डॉक्टर ने यही बोल रहे।
1: अच्छा जी,
3: ना हाँ जी, 8 साल हो गए अब मुझे, अब हाथों में कंपन कंपन, बस इतना बता दें इलाज मेरा सही कर रहा है, हाथ का मेरे काम कामते हैं बस,
1: हाथ कामते हैं।
3: हाँ
1: अच्छा, आप जलंधर से कॉल कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम वैसे हेड इंजरी पे है, पर आपने, आपके प्रश्न को हम अगर समझ सके हैं, तो आपने ये कहा कि आपके हाथों में ट्रेमर्स है और आपका पार्किंसंस डिजीज का डायग्नोसिस हुआ है ना? तो हाँ, तो पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस हुआ है, तो देखिए शुरू शुरू में मेडिसिन चलती हैं और मेडिकेशन से काफ़ी हद तक सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करें, तो मेडिकेशन से अगर बेनिफिट होता है तो वो सही रहता है। और पार्किंसन डिजीज में एक सर्जरी की भी पूरी हमारे पास स्टैंडर्ड, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी होती है जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो पहले आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए।
2: तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर साहब, तो इसके सबसे सामान्य कारण हेड इंजरीज के, सिर की चोट के क्या रहते हैं?
1: तो ये हेड इंजरी की जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए जब हम हेड इंजरी की बात करते हैं तो कौन कौन इस हेड इंजरी में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो जिस इंसान को चोट लगती है, फिर दूसरी बात होती है कि वो किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ है कि हमारी रोड्स। तो हेड इंजरी की सारी वजह ड्राइवर्स में, व्हीकल में और रोड्स में है। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें तो इस वक्त हम मेनली इसी पर फोकस कर रहे हैं, बाकी और कोई

0: कारण होते हैं, जैसे किसी हाइट से गिर गए या किसी गेम्स में हेड इंजरी हो गई, वो अलग बात है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो लगभग 60-80% केसेस ऑफ हेड इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले बात आती है ड्राइवर्स की। तो ड्राइवर्स की जब बात आती है हेड इंजरी के कॉज के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि अगर ड्राइवर सही नहीं हो तो हेड इंजरी के कॉजेज बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन ड्राइव करता है, क्या वो सही तरीके से ड्राइविंग के लिए एक्सपर्ट है, क्या उन्होंने लाइसेंस सही तरीके से लिया। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस भी है, आपको ड्राइविंग भी आती है, तो आप कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे आप रूल्स फॉलो करते हैं, क्या आप लेन ड्राइविंग करते हैं, क्या आप सीट बेल्ट पहन के रखते हैं, अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो क्या आप हेलमेट पहनते हैं, क्या आपका हेलमेट सही मेक का है, क्या आप हेलमेट सिर में रखने के बाद अच्छे से अपने नेक से स्ट्रेप करते हैं, क्या आप ड्रिंकिंग और ड्राइविंग करते हैं, या फिर आप रॉन्ग साइड में अक्सर हम देखते हैं लोग ड्राइव करते हैं, या फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि आज के तारीख में लोग ड्राइव करते हैं मगर साथ में मोबाइल में बातें भी कर रहे हैं और मोबाइल में टेक्स्टिंग भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जैसे हमारे रोड्स हैं, हमारी रोड्स भी अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे रोड्स पर स्पेसिफाइड होना चाहिए कि रोड्स में ऐसा ना हो कि कोई एनिमल्स आ रहे हो, टू व्हीलर्स, फास्ट लेन, स्लो लेन, ये सब चीज़ों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी को होनी चाहिए। तो इसके अलावा व्हीकल्स की क्वालिटी जैसे एयर बैग, सीट बेल्ट पहनना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के अगर हम ठीक से पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स और हेड इंजरी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: यानी हमें सही से ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपना भी प्रिकॉशन ले सकें। अपने प्रिकॉशंस लेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और अपना बचाव कर सकेंगे। इस पर हम और भी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, तो एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र और शिल्पा मैम को इस विषय को लाने के लिए थैंक्स। डॉक्टर साहब, यंग बच्चे बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है, और उस समय क्या उपचार होना चाहिए, और बच्चों को अपनी तरफ से एक डॉक्टर के नाते समझा दें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
2: नमस्कार नरदेव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक यंग बच्चा बाइक ड्राइव कर रहा है लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहा है। तो इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम उन बच्चों को। अगर आपने मेरे प्रोग्राम को सुना होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक श्रोता ने कहा था कि एक यंग लड़का जिसे एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, तब से लेकर लगभग 15 साल में अभी भी कोमा में है। तो उनके सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटस है, कितनी प्रॉब्लम होती है आप समझ सकते हैं। तो हमारे बच्चों को कोई भी काम करते हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे जितने भी हमारे जो इसके सूत्रधार हैं, बच्चों के स्कूल करिकुलम में एक तरीके से ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि बच्चे जो है इसके दुष्परिणाम के बारे में जान सकें। रही बात ट्रीटमेंट की कि उस वक्त क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त बच्चे की हालत क्या है, कितनी गहरी चोट लगी है। जैसे हमने कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें मालूम लगता है कि हमें पता लगता है कि ये शायद सीरियस हेड इंजरी हो सकती है, जैसे बेहोश हो जाना, उल्टी हो जाना, या फिर नाक से कोई CSF का आना, या कोई दौरे पड़ना, या फिर ड्राउजी हो जाना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई किसी ऐसी जगह पर है, कोई हिल स्टेशन पे जा रहा है, या कहीं रास्ते में है, कहीं दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करे, या कोई दे रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करे, उसको क्या दे?
2: तो ये हेड इंजरी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि रोड्स में और सिटीज़ में ही हो। आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, दूर दराज के एरिया में हैं, इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हमारे लीडरान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाए। और हमारे प्रोग्राम में, खासकर स्कूल के बच्चों में, हम जितनी जल्दी इस तरीके के नॉलेज इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकें, इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा था पीछे, हमारे जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह जी ने जो एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया है, तो वो लोग सिर्फ ना केवल ये काम करते हैं बल्कि वो इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाने के लिए सारे हिंदुस्तान में टाइम टाइम पर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हमारे

0: लीडरान को, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को और हमारे जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको इस तरीके के प्रोग्राम को लेके जितने भी पब्लिक हैं, चाहे पुलिस वाले हों या कोई कॉमन पब्लिक हो, उन सब चीज़ों को कोई भी इंजरी होती है, एक्सीडेंट होती है, तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाना चाहिए, ये एक बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है। पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए, ताकि मान लीजिए एक गाड़ी का कहीं पर दूर दराज एरिया में एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोकल के लोग टू सम एक्सटेंट मान लीजिए उनको इसके बारे में मालूम है कि कैसे मरीजों को किसी पेशेंट को किस तरीके से सेफ वहाँ से एक्सट्रिकेट किया जाए, निकाला जाए और फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, तो ये सब चीज़ें एक कॉमन सी साधारण सी बातें जो एक जनरल पब्लिक को आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस पर विचार करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार होता है कि चोट लग गई, अगर गिर गए या कहीं पर भी चोट लगे, लगता है कि ठीक है, लेकिन कई बार उसके आफ्टर इफेक्ट्स लगते हैं या फिर लगता है कि अंदरूनी चोट है, तो हमें कैसे पता लगेगा और उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए?
0: जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई ऐसी कोई चोट लगती है सिर में, तो दो चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, क्या ये साधारण चोट है या फिर हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक अगर डॉक्टर या कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो कंसल्ट करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें लगता है कि हो सकता है कि दिमाग में गहरी चोट लगी हो या चोट लगने के दिमाग के अंदर चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो, तो वो ऐसे लक्षण होते हैं जैसे मान लीजिए चोट लगने के बाद कोई पेशेंट या कोई इंसान कोई 5-10-15 मिनट तक बिल्कुल बेहोश रहा, या फिर चोट लगने के बाद उनको उल्टियां शुरू हो गई, या फिर दौरे पड़ गए, या फिर मान लीजिए कि कहीं से सिर से कहीं से जिसे हम CSF कहते हैं उसके लीक होना शुरू हो गया, या कोई फोकल डेफिसिट यानी कि मान लीजिए हाथ में, पाँव में, टांग में कहीं पर एकदम से कमजोरी आ गई है। तो इस तरीके की कोई भी अगर कोई घटना हो तो ऐसे हालत में हमें तुरंत बिना किसी देरी किए न्यूरोसाइंसिस से रिलेटेड कोई भी सेंटर हो तो वहाँ पर जरूर हमें जाना चाहिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: जी, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैं राजकुमार छावला से बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
2: मेरी प्रॉब्लम ये है जी, मेरे को
0: रिक्वायरमेंट है एक्सरे करना है या फिर CT स्कैन करना है, तो वो सब चीज़ें वो सब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार होता है कि इंसिडेंट हो गया, तो अगर मेजर होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है, माइनर होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है?
0: हाँ जी, तो पेशेंट जब हॉस्पिटल आते हैं तो उसके बाद सबसे पहले न्यूरोसर्जन पेशेंट को इवेल्युएट करता है और पेशेंट को जनरली वो न्यूरोसाइंसिस के टर्म्स के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हेड इंजरी डिस्क्राइब करता है कि पेशेंट किस ग्रुप में है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी का वजन लेते हैं तो हम कहते हैं 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, तो उस तरीके से जब हेड इंजरी की मात्रा होती है तो हम उसके लिए एक स्केल यूज़ करते हैं, उसे हम GCS कहते हैं, मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। तो उसमें हम पेशेंट्स को पॉइंट्स देते हैं, सबसे कम पॉइंट्स होता है 3 और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होती हैं 15। तो इस किसी पेशेंट में कितने पॉइंट्स बनते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो माइल्ड पेशेंट्स में जिनमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक रहती है, उनके 15 में से 15 नंबर्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन मान लीजिए और कोई ज़्यादा चोट नहीं लग रही, कोई फ्रैक्चर के चांसेस नहीं है, तो सिंपल NLJ6 मतलब दर्द की दवाई, अगर कोई चोट कहीं पर टांके लगने की ज़रूरत हो तो वैसे करके भेज सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर है या किसी सिर के अंदर ब्रेन में डैमेज नज़र आती है और ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट नज़र आता है, तो उसकी क्या साइज़ है उस हिसाब से न्यूरोसर्जन डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करिए या फिर उनको ऑब्जर्व किया जाए, तो उस हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट चलती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो जैसे कि आपने का ऑपरेशन हो गया या सर्जरी हो गई, तो ये किस किस केसेस में करी जाती है और इसके बाद रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
0: हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा तो 3 चरण होते हैं किसी भी हेड इंजरी को। अब हम बात कर रहे हैं मान लीजिए किसी को सीरियस हेड इंजरी है, तो पहला चरण होता है जैसे प्री हॉस्पिटल केयर, जहाँ पर इंजरी भी वहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड्स बाई स्टैंडर्ड्स, अक्सर हमारे यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो पेशेंट्स को उठाते हैं या लेके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो पहले उनको ट्रेंड होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर कर सकते हैं जिसकी चलते पेशेंट को फर्दर इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो गोल्डन आवर में पेशेंट हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, तो हॉस्पिटल में पहुँचने के पश्चात जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मान लीजिए पेशेंट को ऑपरेशन की डिसीजन होता है तो उसके कुछ वजह होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन में जैसे हम एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज कहते हैं, ब्रेन की कुछ झिल्ली होती है उसके बाहर क्लॉट है या उसके अंदर क्लॉट है या ब्रेन ही

0: डैमेज हो गया, तो ऐसे हालत में क्लॉट्स को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे हम क्रेनियोटमी कहते हैं। स्कल खोल के उस क्लॉट को बाहर निकाला जाता है। कई बार ब्रेन में चोट लगने के बाद सूजिश आती है, तो उस सूजिश को एकोमोडेट करने के लिए हमें ब्रेन में और जगह बनानी पड़ती है, तो हम उसे ड्यूराप्लास्टी कहते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक न्यूरोसर्जन करता है।
1: तो क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं?
0: अब जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होती हैं। अब जब भी हेड इंजरी होती हैं, उस प्रॉब्लम्स के या कॉम्प्लिकेशन के दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि जब चोट किसी को लग गई तो लग गई, ब्रेन डैमेज हो गया तो हो गया, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि चोट लगने के बाद अगर जल्दी से पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट आवर या गोल्डन आवर में, तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं, मेडिसिन देते हैं ताकि फर्दर सेकेंडरी इंजरी ब्रेन में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्रेन के अंदर किसी को बहुत बड़ा क्लॉट है, तो उस क्लॉट की वजह से बाकी के नॉर्मल ब्रेन में प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से नॉर्मल ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो ज़रूरी है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है उस क्लॉट को बाहर निकाला जाए। तो ये प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करना, प्राइमरी इंजरी तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इंजरी ही ना हो, लेकिन एक बार हो गई तो सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स का रोल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर पेशेंट को इंजरी हुई है, उस तरीके से पेशेंट्स को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी के मोटर एरिया में, दिमाग के ऐसे हिस्से जहाँ बॉडी का कंट्रोल होता हो, तो वो डैमेज हो गया तो आदमी को पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर राजेंद्र एंड मैडम गुप्ता, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस या एंजाइटी हो तो इमीडिएटली माइंड कैसे काम कर सकते हैं टू कंपोज वन सेल्फ? शिवम कनेक्टेड फ्रॉम जर्मनी।
0: नमस्कार शिवम जी, क्या टाइम है अभी जर्मनी में?
1: ये मैसेज है हमारे पास। हाँ,
0: ये प्रश्न आपका बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी तो कैसे अपने आप को कंपोज करें। तो आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे। देखिए इसका सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो इसके लिए हम सिंपल अगर हमारे अपने पुराने योगिक या वैदिक स्टाइल में जाएं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई हैं, वही फॉलो करना है। मेरे ख्याल से वही सबसे बेस्ट चीज़ है। कुछ देर के लिए जैसे आप लंबी लंबी सांस लीजिए, 5 गहरी लंबी सांसें लीजिए, 1 से 10 गिनिए, और किसी ऐसे इंसान को याद कीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है या आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आई एम श्योर कुछ देर में, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनट में आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी बहुत लेवल तक कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो अक्सर गिर जाते हैं। तो जब भी गिर जाए लगता है माँ बाप को डर लगता है कहीं उनके सिर पर चोट तो नहीं लग गई, तो क्या हर बार डॉक्टर को कंसल्ट करें या कुछ ऐसे स्पेशल सिम्टम्स हैं कि हाँ जब हमें लगे कि हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और कई बार होता है कि हम कुछ घरेलू उपचार भी देने लगते हैं कि हल्दी वाला दूध दे दिया कुछ इस तरह से, तो ये कितना सही है?
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर बार छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ लक्षण, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे मान लीजिए चोट लगने के बाद बेहोश हो जाते हैं या दौरे पड़ सकते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ें होती हैं तब तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज़ मान लीजिए खेलते वक्त किसी को हल्की सी चोट लगी, छोटा सा अगर स्किन में कहीं पर, स्कैल्प में कहीं हल्का सा कट लग गया और पेशेंट वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को अगर इस तरीके की दूसरी तरीके की सिम्टम, जैसे मैंने कहा, अगर उस तरीके की बात होती है तो फिर आपको केयरफुल रहना चाहिए, तो मेडिकल कंसल्टेशन फिर कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हेड इंजरीज पे, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर, तो जैसे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ जो हमें अपने पास रखनी चाहिए अगर कोई गिर गया या किसी के चोट लग गई तो हम इमीडिएटली उसको पानी दें या उसके कोई कुछ लगा दें, मतलब हल्दी या लोग कुछ कहते थे ऐसे लगा दें, मतलब इमीडिएटली हम क्या करें, जो चीज़ हमें अपने पास हमेशा कैरी करनी चाहिए बाय द टाइम हम डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक रीच करें?
0: सबसे पहले तो साइकिलिंग करते वक्त ये सोच के कि हमें चोट लगे हमें क्या कैरी करना चाहिए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब साइकिलिंग करते हैं या भी कोई बाइक चलाते हैं, तो जैसे साइकिलिंग के लिए भी हेलमेट्स रिकमेंडेड हैं, नी गार्ड हो गए या एल्बो गार्ड हो गए, हाथ में ग्लव्स हो गए, तो इन सब चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा किसी भी नॉर्मल पब्लिक को कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ लेकर या रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर ये ज़रूर है कि एक पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा अगर शुरू से स्कूल

0: हम सब लोगों को ये सब एक चैप्टर या कोई इस तरीके से प्रोग्राम्स होते रहें तो लोग पब्लिक अवेयर रहें कि भाई ये चीज़ हो गई है तो इस सिम्टम्स के चलते अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बस इतनी सी नॉलेज, इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि कोई पेशेंट या कोई नॉर्मल इंसान कहीं चलते हुए बेहोश हो गया तो कोई भी राहगीर चलता हुआ आके CPR करना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मीडिया ने इस चीज़ को ऐसा फैलाया कि सारे पब्लिक को अल्टीमेटली इससे हेल्प होता है। तो इसी तरीके से अगर हेड इंजरी के अवेयरनेस को भी अगर हम हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से फैलाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक बेसिक लेवल की नॉलेज आ जाएगी, तो हम सबको इन सब प्रश्न के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर कई बार होता है कि हमें हेड इंजरी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, लगता है ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है अच्छा ये हो रहा है, तो हो सकता है जब चोट लगी थी उसकी वजह से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कितने समय तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होता? क्योंकि अक्सर अभी जैसे कॉल्स भी हमारे पास आई तो कई सालों तक उनको लगता है कि तब लगी थी तो शायद उसका अब इम्पैक्ट हो रहा है।
0: हाँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके बारे में अक्सर जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कुछ साल पहले हुआ था, ये तो शायद मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ हो। तो इसका क्लियर आंसर देना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा है कि जैसे माइल्ड हेड इंजरी होता है, पहले कहा जाता था कि माइल्ड हेड इंजरी मतलब पेशेंट होश में है, ऐसी कोई मेजर बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो कि इवन पेशेंट अगर माइल्ड हेड इंजरी थी तब भी हो सकती हैं बाद में कोरिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक से नींद नहीं आना, याददाश्त का ठीक से नहीं रहना, या फिर चिड़चिड़ापन होना, इस तरीके की कुछ चीज़ें छोटी मोटी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि माइल्ड सी हेड इंजरी हुई थी कुछ साल पहले, उसके बाद अब और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ जो है वो कोरिलेट करने लगते हैं, वो ज़रूरी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, शॉर्ट में आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कि प्रिवेंशन के लिए वो क्या करें?
0: इस पे हाँ, जैसे मैंने कहा था कि एक हेड इंजरी एक एपिडेमिक की भांति है, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, ये हमें हर लेवल पे फैलाना चाहिए, स्कूल से लेकर जनरल पब्लिक से लेकर हर ग्रुप में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑफिसेज में ये सब चीज़ का अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अगर हम इस अवेयरनेस को फैलाते हैं तो आई एम श्योर हमारे देश का एक जो हमारे ऊपर एक जो तमगा लगा हुआ है कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हेड इंजरी होती हैं, तो ये तमगा हमसे हट जाएगा।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये है, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, डॉक्टर अनिल कालरा, गुरुग्राम। वी लर्न बाय मॉक ड्रिल फॉर अर्थक्वेक वी मे फेस और नॉट इन आर लाइफ टाइम। वी ड्राइव 2-व्हीलर डेली, वी मस्ट वियर हेलमेट। तो ये भी एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें जब भी जाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, चाहे हम बाइक चलाएं चाहे साइकिल चलाएं। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूंगा कि जैसे कालरा जी ने कहा, जो भी श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमें किसी स्पेसिफिक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं है। जिस भी इंसान को इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, इसको फैला सकते हैं। एक दिन एक वक्त ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए किसी को कहीं भी चोट लगी हो तो आसपास जितने भी खड़े लोग हो, चाहे वो बाईस्टैंडर्स हो, पुलिस वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। तो ये हमारा एक ड्रीम है ताकि हमारे हेड इंजरी के नंबर्स को और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें।
1: तो श्रोताओं, सिर की चोट छोटी हो या बड़ी, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। समय पर पहचान, सही उपचार और थोड़ी सी सावधानी जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, यशोदा मेडिसिटी, न्यू दिल्ली। इससे पहले ये लगभग 3 दशक तक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स, न्यू दिल्ली भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, और साथ में अपने सारे हमारे चिंदे में श्रोता थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जाते जाते बस इतना कहूंगी, सावधानी ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही जीवन है। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नहीं मैं
1: नामकरण कर देना सी होता
0: तो ही नहीं कर रहा हूँ।
1: ठीक है जी, फिर अगली बारी फोन करके मुझे दस्यो कुत्ते का की नाम रखे है।
0: ठीक
1: अच्छा एक होर गल मैं पूछ रही सी ना, कुत्ते रोंदे बड़े होंदे, तुहाड़ी गली च भी कुत्ते रोंदे रहंदे है?
0: है। कुत्ते नहीं बिल्ली जरूर आती है रात रोज साड़ी।
1: अच्छा बिल्ली जरूर आंदी है।
0: दिल्ली से आंदी है कोठे साडे साडी एक छत्ती बनी हुई है उत्थे आके रात रहती है
1: हाँ
0: सवेरे चल जाती है।
1: अच्छा सवेरे चल जाती है। कोई है रीजन कि वो रोंदे क्यों क्यों होंदे पता कुछ? कई तो भी रोंदे रहते बिना गल तो दूजे देख के
0: नहीं ये नहीं पता रोंदे क्यों
1: ये नहीं पता कहते।
0: रोंदे है बिल्ली जरूर आंदी साडे कोठे आ गए
1: अच्छा अच्छा
0: रोज रोज
1: रो अच्छा रोज ही रोंदी है,
0: रोज आंदी।
1: पता नहीं केड़ा गम लेके बेचारी घूमती होनी। चलो ठीक है जी। अच्छा गीत केड़ा सुनना चाहोगे तुसी आज?
0: गीत कोई अपनी मर्जी का सुना।
1: ठीक है जी, अपनी मर्जी दा सी गाना चला देने आज जी। तो थैंक यू सो मच सन कॉल करने वास्ते संदीप जी।
0: थैंक यू।
1: हेलो जी, गलबात अज चल रही है डॉग्स के उत्ते। तो एक खास ये भी गल है कि बहुत सारे डॉग ऐसे होंगे ने जड़े सारे नहीं पै जाते है ना, किसी के भी खास नहीं होंगे, पर कहते डॉग वफादार होंगे चंगे होंगे। चलो ये गल्ला चलदिया रहनगियां, सिलसिला भी इस तरीके ना चलता रहेगा। तो बाकी भी कॉलरस जल्दी जल्दी मेरे ना जुड़ो, तो कोई गलबात सुनाओ अपने डॉग पैट बारे भी मैंने दसो। अज मौका है उन्होंने बारे गल कर ली, तो अज कि उन्होंने प्यार करते हो इस बारे भी मैंने दस सकते हो खुल के कि हाँ जी तुम कुत्तिया का किस तरीके का ध्यान रखते हो, किदा उन्होंने देखभाल करते हो, किमें टाइम टाइम इंजैक्शन लगवाते हो, इस सारे बारे गलबात चलती रहेगी। तो नंबर है 0181 43 174, इस नंबर पर तुम मैनू कॉल करके दस सकते हो। 0181 23 42 174 ये नंबर है जी। इस नंबर पर जल्दी जल्दी तुम मैं कॉल करो जी, और इस तो बाद जानते हैं फिर अगले कॉलर तो कि उन्होंने की राय तो की कहें ने।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हाँ जी दोस्तों, तो म्यूजिक सॉन्ग तुसी इंजॉय कीता है, बस इदा ही असं भी यही कहना चाहते हैं कि हौले हौले सब कुछ हो ही जाता है, बस थोड़ा जहा पेशेंस, थोड़े जे सबर की गल है। तुसी किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करो तो जो सबर का फल हों ना वो मिठा ही होंगे, किसी ने जो कहावत कही है ना, तो एवं नहीं कही शिवम।
1: तो जे कहावत कही भी है तो आप भी मान लिया ना, आप सबर कर लिया ना, पर आप अपने स्रोतों को सबर नहीं करवाना, क्योंकि हुण असीं शुरू करांगे जी अपना खास सैगमेंट सिनेमा सिनेमा। जी दोस्तों, फिर गल करते हैं सिनेमा सिनेमा की। तो अज असी सिनेमा सिनेमा दे विच जो गल करांगे ओ मूवीज़ बारे जो सानू साड़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाल जोड़दी हैं, क्योंकि असी अज जीव विविधता दिन मना रहे हैं। तो फिर मैनू लगता है कि थोड़िया ओ मूवीज़ सानू नेचर दे नाल, साड़े जो नाल ऑर्गैनिजम्स विचरदे ने, एनिमल्स विचरदे ने, बर्ड्स विचरदे ने, उन्हां दी गल हो जाए, उन्हां दी कंजर्वेशन की गल हो जाए।
0: बिल्कुल शिवम, तो मैं कहना चाहूँगी ना कि जिहड़ा साडा बॉलीवुड है, साडी फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें सानू सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली मूवीज़ नहीं दित्तियां, बहुत सारिया इदां दियां फिल्म्स ने जो सानू इंस्पायर कर दियां ने साडे नेचर दे नाल, साडी
1: जी मैनूं लगदा है कि जो साडी जिंदगी नाल जुड़ियां होंदियां, खास करके नेहा, क्यों? क्योंकि मैंने लगता है उस साड़ी जिंदगी नू इन्ने बखूबी तरीके नाल दर्शाउंदियां ने कि असी कितना ना कितने अपने आप नू उस जगह नाल, उस चीज़ नाल रिलेट कर लैंदे हां।
0: प्रैक्टिकली ते इमोशनली हर तरीके नाल जिहड़ा साडा सिनेमा है सानू जोड़दा है लाइफ दे नाल, रियलिटी दे नाल। ते इसे तरह ही आपां कुछ अज इदां दियां मूवीज़ लैके आए ने जो सानू साडे नेचर दे नाल जोड़दियां ने, एनिमल्स दे नाल, ते असी उहनां नाल किदां कनैक्ट कर सकदे हां।
1: ते फिर करिए गलबात शुरू।
0: बिल्कुल शिवम, करदे हां गलबात। ते
1: जी गल करते हैं पहली मूवी की, पहली मूवी है जी शेरनी। जी सब तो पहला ये मूवी की जो असी गल कर रहे हैं तो पहला नाम जो जहन दे विच आ रहा है वो आ रहा जी विद्या बालन जी का। ये फिल्म एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी है जो जंगल ते इंसानी आबादी दे विच हो रहे टकराव नू संभालने की कोशिश करती है। फिल्म टाइगर कंजरवेशन, हैबिटेट लॉस ते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ते आधारित है।
0: तो दोस्तों मूवी बहुत ही रियलिस्टिक तरीके नाल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट नू दिखाउंदी है। जो इंसान फॉरेस्ट विच जाता है जानवर अपना घर खोना शुरू कर देंदे ने। एक बच्चा रोज़ स्कूल जाते हुए एक सुखे पेड़ नू पानी पाउंदा सी, लोग हसदे सी। कुछ महीने बाद वो पेड़ ते पंछियां दा घोंसला बन गया। छोटी सोच भी नेचर नू जिंदा रख सकती है। दोस्तों ये छोटी जी जिहड़ी इंस्पिरेशन जी स्टोरी है ना, मतलब जे तुसी छोटे तो भी शुरुआत करोगे ना अगे जाके एक बहुत ही वड्डी मोटिवेशनल स्टोरी बन सकती है।
1: दोस्तों फिल्म ते वापस आइए, तो ये फिल्म OTT ते रिलीज़ हुई सी ते क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की इस फिल्म की। रॉटन टोमैटोज़ ने फिल्म नू 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ दिते ने। तो जे मैंने लगता किसी ने नहीं देखी तो फिल्म देख ले, क्योंकि फिल्म की खास गल ये है कि ये सिर्फ एक थ्रिलर ही नहीं बल्कि प्रकृति के मनुख के रिश्ते नू बहुत ही गहराई नाल दिखाती है। तो फिर मैंने लगता है मस्ट वॉच है साडे यूथ लई।
0: बिल्कुल शिवम, तो जे किसी ने नहीं देखी ना तो मूवी नू जरूर देखो, तो सीखो अपनी कुदरत बारे कि असीं उहनू किद्दां संभाल सकते हैं।
1: कि मैंने लगता है सब तो ज़्यादा जरूरी है कि बैलेंस बनाना, तो मैंने लगता है फिर आसानी नाल असीं बना सकते हैं बैलेंस।
0: बिल्कुल, इहदे विच कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बस थोड़े जे एफर्ट्स की लोड़ है कि थोड़ा जे एफर्ट्स असीं अपने नेचर वल नू करिए।
1: तो बस फिर करो एफर्ट, क्योंकि असीं एफर्ट कर लिया जी गाने का, तो फिर गाने तो पार आवांगे लैके एक होर वधिया फिल्म तुहाडे लई।

0: दोस्तों गजब भयो रामा जुलम भयो रामा, मुझे लगता है कि गजब हो गया क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी। यो वाणी मेरे नाल आरजे शिवम ते
1: आरजे नेहा दे नाल ते। दोस्तों सिर्फ गजब होया, जुलम तो नहीं होया। वैसे
0: जुलम हो जाएगा क्योंकि मैंने लगता है कि नेहा नाल मेरी ड्यूटी है तो जुलम हो ही जाता है, क्योंकि नेहा फिर मैंने अखा कट के कह रही है कि फिल्म की गल करो तो मैं फिल्म की गल नहीं कर रहा, तो फिर मेरे नाल तो जुलम होना ही है।
1: हाँ तुम कह रहे हो मैं तेरे जुलम कर दी हाँ,
0: फिर मैंने कहना तो पेगा ना
1: क्योंकि जी असी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करांगे तो साडे लिसनर्स को इन्फॉर्मेशन किद्दा जाएगी शिवम।
0: तो बस फिर दस दिंदे आ जी, फिल्म साडी अगली फिल्म है जी
1: कड़वी हवा। हुण असी गल करदे आ इमोशनल ते मीनिंगफुल फिल्म कड़वी हवा बारे, जो कि रिलीज़ होई सीगी 24 नवंबर 2017 दे विच। डायरेक्टर सीगे दे नीला मधाप पांडा
0: जी। दोस्तों फिल्म की गल करिए फिल्म राजस्थान ते उड़ीसा दे ड्रॉर प्रोन इलाकों की सच्ची कहानियों तो प्रेरित है। एक अंधा इंसान ते बैंक रिकवरी एजेंट ते माध्यम नाल ए फिल्म दिखाती है कि मौसमी तब्दीली किसे तरह आम लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रही है। डायरेक्टर नीला मधाब पांडा ने इस कहा कि वह लोगों एनवायरमेंट प्रति कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 29 लाख रुपए सीगा, पर समाजिक संदेश करके इसनू नैशनल अवार्ड स्पेशल मेंशन भी मिलिया।
1: तो दोस्तों इस मूवी दी जड़ी दा मैसेज है वो ये है कि जे असी क्लाइमेट चेंज नू इग्नोर करते हैं तो ये फ्यूचर जनरेशन नू सिर्फ कहानियां विच ही हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि जिहड़ी साडी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उन्हां नू तो नेचर देखने का मौका ही नहीं मिलेगा।
0: तो बस फिर दोस्तों सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे इस मोटिव दे नाल बनी ये मूवी सानू ये दिखाती है कि जनरेशनस नू जो नेचर दे रिसोर्सेज है उसकी कंजरवेशन करनी चाहिए, उसकी संभाल इदा करनी चाहिए कि आने वाली जनरेशनस भी उन्होंने रिसोर्सेज नू कंजर्व करके यूटिलाइज कर सकन। तो फिर मैं लगता है इन्नी कंजरवेशन तो असी कर ही सकते हैं, क्योंकि अज के पूरे शो दे विच असी ए मैनीफेस्ट करना है कि वो चीज़ा असी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ा इदा दियाँ है जिस दे नाल असी नेचर नू संभाल सकते हैं। तो सब तो जिहड़ा एक मैसेज मैं देना चाहूँगी ना, कोशिश करो जिन्हें हो सकन दोस्तों पेड़ जरूर लगाओ। तुसी कदे नोटिस कीता होगा ना, जदों असी किसी धुप्प या इन्नी गर्मी दे विच किसी पेड़ दे या किसी रुख दले खड़े हो जाने हैं सानू कितना सुकून।

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी ते मैं हां तुहाड़ी दोस्त आरजे नेहा
1: ते मैं हां जी आरजे शिवम।
0: ते दोस्तों हुणी आपां जिहड़ा गाना सुनिया है ना, इस गाने दी एक लाइन मैनूं बहुत पसंद है जो कि मैं शिवम नूं डेडिकेट करना चाहनी हां।
1: किहड़ी लाइन है जल्दी दसो, जल्दी दसो।
0: ते ओह लाइन है, मैं कुड़ी पंजाब दी, मेरा रेशम दा रुमाल है, जिंदगी भर भूलेगा ना कर दूंगी वो हाल रे। जिन्ना शिव मैनूं तंग करदा है ना, मैनूं लगदा मैनूं यही लाइन डेडिकेट करनी चाहीदी है।
1: मैं कित्थे तंग कीता तुहानूं, मैं तुहानूं तंग कर सकदा नहीं हाँ, क्योंकि मैनूं लगदा तुसीं मैनूं बहुत तंग कर रहे हो, क्योंकि हुण इदां तंग करदे करदे तुसीं जिहड़ी नवीं मूवी लैके आ गए हो उहदे बारे तां दसणा पऊगा,
0: क्योंकि मैं कदों ते शिवम नूं इही कह रही हां कि नैक्सट मूवी दे बारे गल करदे हां, पर शिवम तां प्रोग्राम इंजॉय करन च लगा होया है
1: जी। जदों असीं रेडियो तो आईदा है, स्रोतियां नाल गल करी दी है, तो प्रोग्राम तो इंजॉय करना बनता है, क्योंकि फिर वो भी तो साडे नाल इंजॉय करदे, तो जे असीं इंजॉय नहीं कीता तो फिर गल किद्दां बणूगी।
0: तो इंजॉयमेंट दे नाल नाल दोस्तों इनफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर चलते हैं साडी नैक्सट मूवी दे वल
1: जी। साड़ी नैक्सट मूवी है जी जंगल। ये मूवी डेंस फॉरेस्ट विच बेस्ड है, सर्वाइवर थ्रिलर है, जिथे टूरिस्ट जंगल विच फस जाते हैं, तो डेंजरस क्रिमिनल्स उन्होंने होस्टेज बना लेंगे।
0: तो दोस्तों 14 जुलाई 2000 मूवी आई सी, डायरेक्टर सके राम गोपाल वर्मा। तो इस मूवी के सब कुछ जंगल बेस्ड स्टोरी है, एनिमल्स बारे तो जंग वाइल्ड लाइफ बारे। तो दोस्तों इदा दियाँ जो मूवीज़ होंदिया है ना, सानू बहुत इंस्पायर कर दी हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो इदा दियाँ मूवीज़ होंदिया ना, वो ज़्यादा तो ज़्यादा देखा करो, जिद सू इंस्पिरेशन मिल सके कि असं अपने नेचर की संभाल किदा कर सकते हैं, क्योंकि साड़ी आने वाली जनरेशन लिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: दोस्तों तुम दस दिए कि कुछ इंटरनेशनल मूवीज़ भी ने जिमें लाइफ ऑफ पाए है, इस अवतार है, तो मैंने लगता है कुछ होर मूवीज़ भी ने जिमें कि वॉली है, वॉल ई इज़ वन ऑफ द मूवीज़ जो तुम बिंज वॉच कर सकते हो, तो ईजीली इंजॉय कर सकते हो, जो तुम्हें नेचर नाल कनैक्टेड फील करवाणगियां।
0: तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का मतलब है धरती से हर तरह की जिंदगी का बैलेंस बनाना, पेड़ पौधे नदियाँ एनिमल्स बर्ड्स तो ह्यूमनस। अज दियां ये मूवी सानू एंटरटेनमेंट दे नाल नाल वार्निंग भी दिंदियां ने, जे असी नेचर नू बचाया नहीं ते फ्यूचर अनसेफ हो सकता है।

0: की ट्रिप प्लान बनाया है?
1: जी ट्रिप प्लान कीता नहीं है, बट एक कॉल जरूर जुड़ गई है, तो फिर उन्होंने गल कर लेने तो उन्होंने पूछ दिया वो कितने लेके जाएंगे। हेलो जी, कौन बोल रहे हो जी, कितों गल कर रहे हो? नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। कौन बोल रहे हो, कितों गल कर रहे हो? नमस्कार जी, बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। कितने लेके जा रहे हो युवानी टूर्स एंड ट्रैवल्स?
2: मैं चले सुल्तानपुर लोधी गुरु की नगरी।
1: बहुत वधिया, जिन्ने भी साडे स्रोते जुड़ रहे आज गुरु की नगरी लेके जा रहे हैं सानू। जी मैं कह रहा सी कि आज जिन्ने भी सरोते साडे नाल जुड़ रहे हैं ना, सानू सारयां नू गुरु की नगरी लैके जा रहे हैं। कोई गढ़ शंकर लैके जा रहा है, कोई अमृतसर लैके जा रहा है जी, तुसी लैके जा रहे हो सुल्तानपुर लोधी। जी जी जी जी जी जी जी जी जी ते मैनूं ए दसो कि तुहाडी ओह कीड़ी याद जुड़ी है सुल्तानपुर लोधी नाल जो तुहानूं अजे तक याद आउंदी है ते तुहाडे दिल विच वसी होई है?
2: ए यादां मेरा बचपन सी सुल्तानपुर लोधी सर। फिर जो भी कुछ सेवा चलदी सी इस साल से 50 साल पहलां वी असीं साडे बच्चे होंदे सी जी सेवा दे टोकरीए चुके सरोवरां दी सेवा कीता करदे सी।
1: ते अजे वी सेवा करदे हो?
3: बहुत छोटे होंदे तो उत्थे जा रहे हो, ते कोई एदां दी याद या कोई एदां दी मेमोरी जिहड़ी तुहाडी उस जगह नाल जुड़ी होवे?
2: बिलकुल बिलकुल, सच्चा सौदा कीता सी
3: जी,
2: जदों तलाब दा निर्माण होया सी ना जी,
1: तीर्थ जगावां है, इत्थे जा के जो मन है वो बिलकुल हल्का हो जांदा है ते एकदम दिल साफ हो जांदा है।
2: सबसे महाराज जी ने इस जगह ते पहली उदासी शुरू कीती सी और इस ओंकार दा पहला नाम इस जगह ते उचारिया गया सी।
1: जी बिल्कुल, बहुत वधिया लगा तुसी अज ए साडे नाल सांझी कीती, सानू सुल्तानपुर लोधी लैके गए तुसी, बहुत वधिया लगा जी तुसी प्रोग्राम दे विच जुड़े। ते एक जो चीज़ सानू महाराज ने होर सिखाई है वो है जी कीरत करके वंड छकना। तो मैनू लगता है ये जो नियम है कुदरत ते भी लागू हो जांदा ने, क्योंकि मैनू लगता है कि कई बार असी कुदरत दीआं जिहड़ीआं चीज़ां है वो शायद कल्ले इन्नियां ज़्यादा उहदी वरतों कर लैंदे कि असी भुल जांदे कि साडी आने वाली जिहड़ियां पीढ़ियां है उन्होंने भी इन्हां चीज़ां दी वरतों करनी है।
3: बिल्कुल, तो इस तरीके नाल ही असी जो स्टार्टिंग जो साडा प्रोग्राम स्टार्ट होया असी अपने लिसनर्स नूं अज यही मैसेज देना चाहते हैं, कुदरत नूं संभालना साडी सारयां दी जिम्मेवारी है, तो साडी आने वाले जनरेशन लई भी उन्हां नूं संभाल के रखना वो भी साडी ही रिस्पोंसिबिलिटी है। तो जिन्ने हो सके उन्ने तुसी रुख लगाओ, तो छोटिया छोटिया कोशिशों नाल ही तुसी अपने नेचर नूं संभाल सकते हो।
1: एक कोशिश साडे सरोते भी कर रहे, साडे नाल जुड़ रहे, तो फिर उन्हां नाल गलबात करते हैं, तो पुछदे हैं कि वो कित्थे लैके चले सानूं। हेलो जी, कौन बोल रहे हो जी, कितों गल कर रहे हो?
4: मैं संदीप सिंह अमृतसर तो बोल रहा।
1: संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है जी अज प्रोग्राम दे विच। संडे अज सारे सरोते सानू गुरु दी नगरी लेके जा रहे हैं, ते हुण सानू गुरु दी नगरी तो ही फोन आ गया, ते संदीप जी किते होर कमांड लै जाओ अज
4: सानू लैने उत्तराखंड से हिमगुल।
1: बहुत
3: क्या बात है संदीप जी, थोड़ी देर पहला मैं शिव नाल यही गल कर रही थी कि जिस हिसाब नाल मौसम चल रहा है ना, बस मेरा कितने पहाड़ी जगह ते ठंडी जगह ते जाने का दिल कर रहा है, बस फिर पहाड़ा का नाम लिया, तो तुसी हुण उत्तराखंड लेके जा ही रहे हो, ते फिर साडे लिसनर्स नूं ते सानू भी उत्तराखंड दीआं कुछ खासियतां बारे ते वादियां बारे दसो।
4: वादियां दे सारा पैदल ट्रैक हैगा 13 किलोमीटर दा, ते पहले 13 किलोमीटर दा, फिर 7 किलोमीटर दा सारा पैदल ट्रैक है।
3: संदीप
1: जी तुहाडी केड़ी याद है जो जुड़ी हुई है?
4: 10 वारी।
1: बहुत वधिया, ते संदीप जी तुहाडी केड़ी याद जुड़ी हुई है हेमकुंट साहिब दा?
4: ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
4: ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ।
1: ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
4: ਹਾਂਜੀ,
1: ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
4: ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

प्रोग्राम दी शुरुआत हो चुकी है ते नाम है लव यू जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हाँ तुहाडी आरजे दोस्त सुरभी, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर था यह रेनबो चैनल। सो ये प्यारी जी साउंड सुन के तुसी एक गल का अंदाजा तो लगा लिया होना है कि आज मैं बड़ी खास गल करन जा रही हूँ। एक खास गल साड़ी जुड़ी है साडे नेचर नाल। जी हाँ दोस्तों, असी हमेशा इस प्रोग्राम में पॉजिटिविटी की गल करते हैं। पॉजिटिविटी के नाल नाल असी जुड़ते हैं जी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज के नाल। अज कहानियां तो मैं तुहानू सुनाऊंगी, पर ये कहानियां सारियां बेस्ड होनगियां किदे ते? भला साडी कुदरत ते। जी कुदरत नूं ध्यान दे नाल वेखे ना तो हर चीज़ कोई ना कोई लैसन दिंदी है, चाहे रुख होन, मीह होवे, सूरज होवे, सुके पत्ते ही क्यों ना होन, ये हर एक चीज़ सानू कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आओ चलिए फिर अज इस नेचर की दुनिया च। अपनी दुनिया च असी बहुत जी के देख लिया, अपनी इस दुनिया के असी बहुत स्ट्रेस ले लिया, हुण वक्त है नेचर में जान का। वैसे नहीं जा सकते, लेकिन तुहाडी आरजे दोस्त पूरी कोशिश करेगी कि अज तुहानू उस दुनिया में लैके जाए जिथे सुकून है, जिथे प्यारियां प्यारियां ये आवाज़ा ने। जरा गौर ना सुनो। ये ओ साउंड है जो तुहानू कदी भी हुण सुनन नू नहीं मिलदी तुहाडे आले दुआले, पर पहले समय दे विच तां इदां नहीं सी ना। पहले टाइम दे विच साडे आस पास चिड़ियां चहकदियां हुंदियां सी, पंछी बोलदे सी, पानी दी आवाज़ आउंदी सी, मझां गावां दी आवाज़ आउणी, हर एक चीज़ की आवाज़ सानू सुनन नू मिलदी सी जो साडा दिन बना दिंदी सी। एक कोयल दी आवाज़ भी तुसीं सुन रहे होणे हो, हाय हाय किन्नी मिठी आवाज़ है। देखो मैनू सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। असी अज नेचर तो बहुत कुछ सीखना है, सानू नेचर बहुत कुछ सिखाती है। देखो इस कुदरत के बड़े सारे पन्ने हैं, पर इन्हां पन्नियां नू देख के भी असी नज़रअंदाज कर रहे हैं अज्ज समय में, जबकि ये सानू रोज़ कुछ ना कुछ कहानी सुनाती है, सानू कुछ ना कुछ दसते हैं। फिर क्यों ना असी इस नेचर नू अपनी जिंदगी विच इस तरीके ले आईए कि सानू इस नेचर तो अलावा फिर होर कोई भी सोना ना लगे। रब का सब तो अनमोल तोहफा पता की है सानू, ये कुदरत जो रब ने सानू दिती है। जो असी उदास होंगे, खुश होंगे, ये कुदरत भी साढ़े नाल हसती है तो खेडती है। ये प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरीके चलता रहेगा। तुहाडी आरजे दोस्त तुहाडे नाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

जी हाँ, प्रोग्राम लव यू जिंदगी चल रहा है, तो मैं हाँ तुहाड़ी दो सुरपी। ये आवाज़ तुसी सुनी होनी है, तुहानू पता चल गया होना कि जिस शहर से आप निकले हाँ उत्ते हवा भी चलती पी है, और हवा थोड़ी तेज़ हो चुकी है, जिस नाल पेड़ ते लगे पत्ते, जेड़े पत्ते सुख चुके ने वो नीचे जमीन ते जा डिग रहे ने। ते ये जो सुके पत्ते है ना, ये जमीन ते डिग के किते फालतू नहीं जा रहे, ये भी सानू कुछ सिखाई रहे ने। जी हाँ, एक न सुक्का पत्ता हवा नाल उड़ रहा से, वो उदास से कि रुख ने उन्हूं छड़ दिता। ते की हुंदा है, हवा ने उन्हें पूछया उदास क्यों है। पत्ते ने कहा, जिस रुख नाल मैं जुड़िया से उसने मैनू अपने तो वाक कर दिता। हवा मुस्कराई ते कहंदी, कुछ विछोड़े खत्म करन लई नहीं हुंदे, नवा सफ़र शुरू करन लई हुंदे हन। उस दिन पत्ते ने पहली बार डिगन तो डरना छड़ दिता। हुण जदों डिगदा ते सोचदा कि ए उहदी नवी शुरुआत है। देखिया दोस्तों, ये पत्ते, सुके हुए पत्ते भी सानू बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ये सानू ये दसते हैं कि जिंदगी विच नवी शुरुआत बहुत जरूरी है। जे असी अज सुक के डिग गए हाँ पत्ते बन के, तो मतलब ये नहीं है कि असी जिंदगी च अगे नहीं जा सकते। एक होर चीज़ इसे सीखने मिलती है कि लाइफ के कुछ चीज़ा सानू छड़ देनिया चाहिए ने, उन्हें ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अगर कोई चीज़ है, कोई रिश्ता है, कोई गल है,

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। इस प्रोग्राम में असं अज नेचर नाल जुड़े हाँ। उम्मीद करती हाँ तुम इस नेचर को समझिया होएगा अज तो मेरे नाल इस सफ़र का आनंद भी मानिया होएगा। सो दोस्तों हुण गहरी साह लो क्योंकि असं हुण बाहर आ चुके हैं उस कुदरत दी दुनिया तो। दूर देखो सूरज हल्की हल्की रोशनी फैला रहा है जिवें हर किसी को नवी उम्मीद दे रहा हो। कुदरत दी सब तो सोहनी गल पता की है, बिना कुछ कहे अंदर दे थकान नूं दूर कर देंदी है। सो सफ़र बहुत वधिया रहा तुहाडे सारे नाल। दोस्तों जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है पर कई बार खुद नूं टाइम देण दे लई नेचर दी गोद विच बैठना बहुत जरूरी हुंदा है क्योंकि कुदरत सिर्फ नज़ारे नहीं दिंदी, ये टुट्टिया होया दिल भी संभाल लैंदी है। मैं हाँ तुहाडी दोस्त आरजे सुरभी ते तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम लव यू जिंदगी। एक प्यारी जिही नेचर दी सैर असीं कीती है ते 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो।

नमस्कार, FM 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी दा इजरेंद्र किंदर है ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो। हुन तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे FM न्यूज़ हेडलाइंस।

शाह ने कहा है कि सरकार देश दियां सरहदां नूं होर सुरक्षित बनाउण लई स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पंजाब पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी हासिल करदिया देश भर दे स्कूलां अते होर संवेदनशील संस्थानां ते बंब दे झूठे ईमेल भेजण विच शामिल नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। CBSE ने 12वीं जमात दियां बोर्ड परीक्षा दियां उत्तर पुस्तिकावां दियां स्कैन कीतियां कापियां प्राप्त करने की आखिरी तरीक एक दिन वधा के 24 मई कीती। देश भर के बजुर्ग नागरिकां लई सहायता प्रणालियां नूं मजबूत करने वास्ते अज एक मोबाइल एप्लीकेशन जीवन की शुरुआत की गई। अत की गर्मी के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों अहम फैसला लेंदिया पंजाब सरकार के सारे दफ्तर स्कूलों और कॉलेजों का समा बदलन का ऐलान। नवे समय मुताबक कामकाज का समा सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर बाद 1:30 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी संबंधी मीटिंग विच टूर्नामेंट लई हर संभव सहूलत नूं यकीनी बनाने वास्ते पंजाब सरकार की वचनबद्धता नूं दोहराया। पंजाब दे मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने मलोट सड़क ते बनन वाले पक्के खालियां दा नींह पत्थर रखिया। IIT रोपड़ वालों अज युवा संगम पड़ा 6 तहत पंजाब वफद नूं बिहार लई रवाना कीता गया। IPL क्रिकेट विच अज सनराइजर्स हैदराबाद दा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाल शाम 7:30 बजे होवेगा। ए सन हुण तक दियां FM न्यूज हैडलाइंस। न्यूज हैडलाइंस दा अगला प्रसारण तुसीं सुनोगे रात 8 बजे। ते हुण तो कुछ चिरां बाद पेश करांगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच साइप्रस दे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोनालाइट्स नाल गलबात कीती। श्री मोदी ने कहा कि भारत अते साइप्रस दा टीचा अगले 5 सालां विच निवेश नूं दुगना करना है। प्रधानमंत्री कल 19वें रोजगार मेले विच वीडियो कॉन्फ्रेंस राही वख-वख सरकारी विभागां अते संगठनां विच 51,000 तों वध नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे। केंद्रीय गृह मंत्री

अब तुहानू दस दईए पोस्ती दोस्तों पंजाबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होंगे वो इंसान जो कि एडिक्टिड है पोस्ट करने वाला। इशारा तो समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। प्रोग्राम दे विच गलबात कर रहे हैं सदूल कवात्रा दी ते बस इस गीत दे विच भी जो नाम सी पोस्ती ए फिल्म रिलीज़ हुई 1950 दे विच जिस नू बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिलिया। फिल्म की गल करिए ता इस फिल्म नू प्रोड्यूस किया सी कवात्रा आर्ट प्रोडक्शंस ने जो कि सरदूल दी है भरा हरचरण सिंह कवात्रा दी प्रोडक्शन से ते इस नू डायरेक्ट किया सी केडी मेहरा यानी कि कृष्ण देव मेहरा ने। फिल्म दे विच मेन किरदार नजर आए मजनू ते शामा। शामा दी सुंदरता ते इस नाल ही मजनू दे डायलॉग्स दोनों दे साथ ने इस फिल्म नू चार चांद लाए। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस से सफल साबित हुई। फिल्म पंजाब ते दिल्ली दे एरियाज दे विच जड़ी है अलग अलग थावां ते जड़ी है शूट हुई है। फिल्म दे म्यूजिक दी गल करिए ते दोस्तों इस फिल्म दे म्यूजिक नू बहुत ज़्यादा पसंद किया गया जिस नू आवाज़ दी सी आशा भोसले ने ते नाल ही साथ दिता सी मोहम्मद रफी साहब ने। फिल्म दी स्टारकास्ट दी गल करिए ते शामा पींग दे किरदार विच हुंदी है ते मजनू पोस्ती शाह दे नाम दे किरदार देखने मिलते हैं। इस नाल ही नाल मनोरमा चांद बुरके ते रणधीर भी इस फिल्म दे विच नज़र आते हैं। फिल्म दी जिहड़ी कहानी है कहानी पंजाबी सभ्यता बारे दसदी है पंजाब बारे दसदी है ते इस दे नाल ही नाल दो लोग किस तरह मिलते हैं किस तरह उन्होंने जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव होंगे है उस दे बारे है। ते इस नाल ही नाल इस फिल्म दे गीतां दी जेकर दोस्तों गल करिए तां दो गुत्ता कर मेरियां आशा भोसले दी आवाज़ दे विच या फिर कजले दियां पानियां राजकुमारी दी आवाज़ विच या फिर मोहम्मद रफी ते शमशाद बेगम दी आवाज़ दे विच गाया गीत जा पैरिया पोस्ती। गीत उस समय बहुत ज़्यादा पसंद किए गए बहुत ज़्यादा प्यार मिलिया ते बस सुनते हाँ इस फिल्म का ही एक गीत जिस नू आवाज़ दी है आशा भोसले ने दो गुत्ता कर मेरियां गीत दे बोलने ते गीत दा आनंद मानो।

0: बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले।
1: जी हाँ, बल्ले बल्ले तक करवाई ही सदूल सिंह कवात्रा दे संगीत ने। यही कारण है कि इन्ने सालों के बाद भी सदूल सिंह कवात्रा का नाम पंजाबी सिनेमा के नाल नाल हिंदी सिनेमा के विच भी बड़े अदब ते प्यार नाल लिया जाता है। उन्हां दीआं अगलियां हिट फिल्मां की गल करिए दोस्तों, 1961 दे विच आई बिल्लो फिल्म एक पंजाबी फिल्म सी, जिस विच सोशल जिहड़े है समाजिक संगीत फिल्म है। इस फिल्म की स्टारकास्ट की गल करिए, इस फिल्म की स्टारकास्ट के नज़र आए इंदिरा बैली, जिसनों इंदिरा कौर भी कहा जाता है, तो उन्हों का साथ दिता अचला सचदेव अलग करना इंदिरा ते चंद बर्क ने। दोस्तों, फिल्म का निर्देशक किया शंकर मेहता ने, ते संगीत साढ़े सब दे हरमन प्यारे सरदूल कवात्रा का। इस फिल्म के गीतों नूं लिखिया सी अजीज कश्मीरी ने। बिल्लो फिल्म के नाल नाल उन्हां दी 1964 दे विच आई फिल्म यमला जट, इस फिल्म ने भी दर्शकों का काफ़ी दिल जीतिया। इस नाल ही नाल होर भी कई सारिया फिल्मां ने जिस दे गीतां दीआं धुनां नूं तैयार किया कवात्रा साहब ने। एक एक करके जाना कि पर पहला सुनते हाँ इस फिल्म का ही गीत। आवाज़ है जी शमशाद बेगम दी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, 1.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर एफएम रेनबो दिल से दिल तक ट्यून इन किया है तुसी अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत विच मैं तुहानू कहा सी कि फिल्म दी खास हस्ती बारे तो गलबात करांगे, पर उस दे नाल ही नाल तुहानू प्रोग्राम के आखिर विच दसांगे इस महीने रिलीज हुई फिल्मों के बारे। चलो जी फिर शुरू करते हाँ। इस महीने मई का महीना चल रहा है दोस्तों, तो बहुत जल्द जड़ा है स्कूल कॉलेजेस दे विच भी छुट्टियां होने वाली, तो कितने एग्जाम्स के चक्कर विच तुसी कोई फिल्म लेटेस्ट मिस तो नहीं कर दिती? जो मिस कर दिती तो मैं क्या जी तुहानू दसन जा रही हूँ इस महीने रिलीज हुई फिल्मों के बारे।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। रात दे 8 बज चुके ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश दियां सरहदां नूं होर सुरक्षित बनाने लई स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पंजाब पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी हासिल करदियां देश भर के स्कूलों ते होर संवेदनशील स्थानों उत्ते बंब दे झूठे ईमेल भेजन विच शामिल नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। सीबीएसई ने 12वीं जमात दियां बोर्ड प्रीख्या दियां उत्तर पुस्तिकावां दियां स्कैन कीतियां कापियां प्राप्त करन दी आखरी तरीक एक दिन वधा के 24 मई कीती। देश भर दे बजुर्ग नागरिकां लई सहायता प्रणालियां नूं मजबूत करन वास्ते अज एक मोबाइल एप्लीकेशन जीवन दी शुरुआत कीती गई। अत दी गर्मी दे मद्देनज़र पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अहम फैसला लैंदियां पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां अते कालजां दा समां बदलन दा ऐलान। नवे समय मुताबक कामकाज दा समां सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर बाद 1:30 बजे तक होवेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एशियाई हाकी चैंपियनशिप ट्रॉफी संबंधी मीटिंग विच टूर्नामेंट लई हर संभव सहूलत नूं यकीनी बनाने वास्ते पंजाब सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया। पंजाब दे मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने मलोट सड़क ते बनन वाले पक्के खालियां दा नींह पत्थर रखिया। IIT रोपड़ वालों अज युवा संगम पड़ा 6 तहत पंजाब वफद नूं बिहार लई रवाना किया गया। ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੇ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच साइप्रस दे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोनालाइड्स नाल गलबात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत अते साइप्रस दा टीचा अगले 5 सालां विच निवेश नूं दुगना करना है। प्रधानमंत्री कल 19वें रोजगार मेले विच वीडियो कॉन्फ्रेंस राही वख-वख सरकारी विभागां अते संगठनां विच 51,000 तों वध नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एफ एम एन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा एफ एम रेनबो दिल से दिल तक ट्यून इन कीता होया तुसी अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहां दे नाल ते मैं कहा जी चेहरे ते मिठी जी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवें हाथ जोड़ हाजिर है तुहाड़ी दोस्त लै के प्रोग्राम शुक्रवार दा दिन है जी ते शुक्रवार नूं 8 बजे केड़ा प्रोग्राम हुंदा है तुहाड़ा पसंदीदा पब्लिक मंच दोस्तों पब्लिक मंच ओ प्रोग्राम जिस विच तुहाडे नाल गलबात करन दा मौका मिलदा है ते बस फिर शुक्रवार दी रात है ते 9 बजे तक अज असीं गलबात करांगे एक अहम विषय दे उत्ते हर वार कुछ वखरा विशा हुंदा है मकसद सिर्फ इन्ना ही हुंदा है कि तुहाडे नाल गलबात होवे तुहाडे विचार जानन दा मौका मिले कि तुसीं समाज बारे समाज विच होण वाली चीज़ां बारे की कुछ सोच रखते हो किवें इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेखदे हो ते मैं कहा जी अज फिर टेस्ट होएगा तुहाडा कि देश दुनिया बारे किन्ना कु जानदे हो तुसी किन्ने क अपडेट हो गल करिए अज दे विषय दी ते पब्लिक मंच दे विच अज दा साडा विशा रहेगा क्राइम दे उत्ते क्राइम जिसनों अपराध भी कहते हैं दोस्तों जो सवेरे उठते हैं ना अखबार खोलते हाँ अखबार के पूरी पूरी अखबार के पन्ने पलटते हाँ हर एक पेज के उत्ते कोई ना कोई अपराध बारे कह जड़ी न्यूज़ है वह होंगी है देश की गल करिए किसी राज की गल करिए किसी जिले की गल करिए किसी पिंड की गल करिए अपराध हर किते मौजूद ने इस अपराध नू रोकना साड़ी जिम्मेवारी है पर इस अपराध नू रोकन ले असी यानी कि असी जनता किस तरह भूमिका निभा सकते हैं की कुछ करना चाहिए ते

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हेलो हेलो
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं
0: जी, नमस्कार जी, कौन गल कर रहे हो
1: मैडम जी।
0: जी? कौन गल कर रहे हो जनाब? फोन थोड़ा
1: हाँ
0: लग गया है प्रोग्राम पब्लिक मंच दे विच।
1: जी, लुधियाने तो बोल रहे हैं जी, लुधियाने तो।
0: जी नाम की है जी?
1: राजवंत सिंह जी, ठीक
0: जी राजवंत सिंह जी, की हाल है
1: है जी।
0: जी? राजवंत जी, प्रोग्राम दे विच अज असी गलबात कर रहे हैं, विषय अज असी चुनिया है अपराध, क्योंकि लगातार वध रहे ने, ते
1: हाँ
0: प्रोग्राम
1: जी, हाँ
0: विच
1: जी,
0: थोड़ा ही समा बाकी है, तुहाडे तो जानना चाहवांगे कि लोकां नूं कानूनी जानकारी जे दित्ती जाए ते
1: हाँ जी,
0: अपराधां दे विच घाटा दे विच अपराधां दे विच कमी देखण नूं मिलेगी
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी। और इस तरह सब
0: जी?
1: तो पहला तो ना माँ प्यो नूं बच्चे ने कंट्रोल करना चाहिए, भी हर वक्त बच्चे ने ध्यान रखे।
0: जी
1: दूसरे स्कूलों के विच कॉलेजों विच ऐसी एजुकेशन होवे जो कि बच्चे नूं मतलब चंगे पासे ले जा सके, ठीक है जी।
0: जी
1: तीसरे जिवें हुण बच्चे पढ़ जांदे ने, कोई एमए बीएड कर जांदा, डबल एमए बीएड, साडे हुण कई बच्चिआं ने डबल एमए बीएड कीती है पर उहनां नूं सर्विस नहीं मिलदी जी। सरकारां नूं चाहीदा है कि पढ़े लिखे दे हिसाब दे नाल उहनां नूं नौकरी दित्ती जावे तां कि जिहड़े बच्चिआं दा ध्यान जिहड़ा ना किसे
0: जी
1: होर पासे ना जावे, ठीक है जी।
0: जी
1: ते आपणे आप ही अपराध घट जाणगे जी जदों बच्चिआं नूं चंगीआं नौकरीआं मिल जाणगीआं,
0: जी
1: ते मतलब ही नहीं जी फिर कोई अपराध वल जाण। हाँ जी,
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी राजवंत जी,
1: हाँ जी,
0: प्रोग्राम विच जुड़न वास्ते ते अपने कीमती विचार साझा करन वास्ते
1: हाँ जी, ठीक
0: जी।
1: है, थैंक यू मैडम जी।
0: दोस्तों, प्रोग्राम पब्लिक मंच, इस प्रोग्राम के तहत मकसद यही होंगे तुहाडे विचार जानने का कि तुसी की सोच रखते हो समाज के विच होण वालियां चीज़ों के बारे। तो अज इस प्रोग्राम के विच कुछ दोस्तों ने फोन मिलाया जिन्हां नाल गलबात नहीं हो पाई, तो कुछ दोस्त जिन्हां का फोन मिलिया तो गलबात भी हो पाई, तो उन्होंने अपने विचार भी बाखूबी रखे। बहुत सारिया चीज़ा अज के प्रोग्राम के विचों निकल के आंदियां हैं, सबर संतोख की तो असी गल कर ली, गल सिक्ख्या की भी आती है, गल परिवार की भी आती है। दोस्तों ने जिमें अलग अलग जगह तो दोस्त जुड़े, आखिरी दोस्त की ही गल करिए जिन्होंने फोन मिलाया, उन्होंने कहा सिक्ख्या बहुत जरूरी है, चंकी सिक्ख्या होगी सानू चंगे माड़े दे विच अंतर पता होगा, चंगे नागरिक बनांगे, एक चंकी नौकरी हासिल करांगे। तो जब नौकरी विच बंदा लग जाता है तो फिर फालतू के ख्याल सोचने लिए समा ही नहीं मिलता, तो इस करके बहुत जरूरी है सिक्ख्या। एक होर गल निकल के आई, परिवार, परिवार की अहमियत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल विच सीखता है उस तो कई गुना ज़्यादा बच्चा अपने परिवार के मैंबरस तो सीखता है। जब कोई गलती करे बच्चा उसनों उत्थे डांटना बहुत जरूरी है, कोई भी गलती, कोई छोटी जी भी गलती, पहला थोड़ा डांटो तो फिर प्यार नाल समझाओ कि

एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। चेहरे ते मिठी जी मुस्कान, दिल विच जोश, प्यार ते दुमिया जोड़, हाजिर हां तुहाडी दोस्त आरजे नेहा रलहन। रात दे 9:04 हो रहे ने ते पेश है प्रोग्राम दिल चाहता है। प्रोग्राम जिस विच तुहाडियां फरमाइशां पूरियां कीतियां जांदियां हैं, फरमाइशां संगीत दियां, फरमाइशां हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दियां। ते अज दे प्रोग्राम दे विच कोई गीत सुनना है? गीत अगर किसी नूं डेडिकेट करना है या फिर कुछ खास याद विच बैठे हो, किसी खास शख्स की याद विच, ते बस फिर गाना भेज दो मैनू, लिख के फिल्म का नाम लिखना ते अपना नाम पता लिखना लाजमी है जी। नंबर दस दिनी हाँ, 9855 10 10 27 9855 10 10 27। लो जी, दोस्तों ने प्रोग्राम दे विच शिरकत करनी भी शुरू कर दी है अपने मैसेजेस दे राही। सब तो पहला प्रोग्राम दे विच मैसेज आया है, नमस्कार लिख के भेजी है सिरसा हरियाणा तो हिमांशु सेठी, शैफी सेठी ते नैन्सी ने। इस नाल ही इन्होंने फरमाइश भेजी है जी, अपना देश फिल्म दा कहिंदे गीत सुना दिता जाए। वाह जी वाह, अपना देश फिल्म दा गीत। मैं कहा जी, जिथे मर्जी घूम लो, अपना देश ना अपना ही हुंदा, इहदी शान ही वखरी है। तो लो जी, फिर सुनते हैं इन्हां दी फरमाइश ते गीत। गीत दे बोल तुहाडे रेडियो सेट से पेश है।

मैगजीन सुनो दोस्तों, प्रोग्राम दिल चाहता है दा आगाज हो चुका है, तो बड़ा ही प्यारा सुहावना जिहा आगाज होया है। आवाज लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी, तुसी गीत सुनिया फिल्म अपना देश मूवी तो। ते दोस्तों हुन वारी हो गई है बाकी दे मैसेजेस नू प्रोग्राम दे विच शामिल करन दी। ते फिर इजाजत है मैगे जी, इजाजत है दोस्तों वालों, इजाजत है। ते लो जी फिर अगले मैसेजेस वाले झांक मार दिया जो कि सानू आया है। सतीश ने जा, बिमला ने जा, शिफाली, शेफी, मास्टर डेविस का मैसेज आया जी। तो इन्होंने फरमाइश भेजी है धर्मवीर फिल्म का कहिंदे गीत सुना दिता जाए। गीत धर्मवीर फिल्म का हम बंजारो की बात मत पूछो जी। वाह जी वाह, गीत सुनांगे मैं कह जी, बहुत प्यारा मिठा जिहा गीत है। इस नाल ही कुछ दोस्तों के मैसेजेस साढ़े तक पहुँच चुके होर भी, तो उन्होंने भी शामिल कर लें। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा, अलका मिड्डा जी की नमस्कार आई है साढ़े तक। इस नाल ही नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा भी मैसेज भेज रहे ने। सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल है। तो इन्होंने बहुत सारे गुलाब के फुल भेजे है, तो लिखते ने किसी भी गीत शामिल किया जाए। तो लो जी फिर इन्हों दो सारे दोस्तों की पसंद सुनते हाँ लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच एक गीत।

में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। तू मिला है

तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम दिल चाहता है, सुन रहे हो तुसी अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहदिनार। मैसेजेस का सिलसिला अग्गे बताते हुए चलते हैं अपने दोस्त वल, उन्होंने मैसेजेस वल जो कि सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो आया है जी मैसेज। टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल, जैविर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पिट्टा बजाज, कालका तो मैसेज किया जी इन्होंने। ते गीत दे इन्होंने बोल लिखे है, मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए मैं बना। पर इन्होंने फिल्म का नाम नहीं रखिया, दसिया कि केड़ी फिल्म का गीत है जी। मैं कह जी तो बड़ी मुश्किल होगी। जो भी मैसेज भेजो फिल्मी फरमाइशा का गीत दा प्रोग्राम है तो जरूरी है, जे तुसी फरमाइश भेज रहे हो प्रोग्राम दे विच ते गीत दे नाल नाल उस गीत दी फिल्म दा भी जिक्र करो। तो जेकर उस गीत दे नाल कोई खास दिल दे करीब किस्सा जुड़िया होया है तो वह भी मेरे नाल सांझा करना बिल्कुल नहीं भुलना। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना रजिंदर सिंह ओबराए का मैसेज आया जी। तो लिखते ने आराधना फिल्म का जड़ा है गीत सुना दिता जाए। एक होर मैसेज गाउन थाना पंजाब तो आया है जी, साढ़े तक पहुंचया है। तो मैसेज भेजन वाले ने हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता ते गीता। मैसेज है इन्हों का, खुश रहो खुशियां बांटो। तो इन्होंने कोई भी फरमाइश नहीं भेजी। तो दोस्तों मैनू ना अज इदा ही बहुत सारे लोगों ना मुलाकात होंगी, तो बहुत सारे लोगों के कुछ लोग तुहानू चेते रह जाते हैं। तो दोपहर का वेला सी, बैठी चाह पी रही सी, तो अचानक ख्याल आया कि असी किन्नियां सारियां लोगों तो उम्मीदा कर लेंगे ना, किन्नियां सारियां। तो जब वो सामने वाला इंसान साढ़े मुताबक काम नहीं करता तो बस वो बंदा फिर साड़ी हेट लिस्ट में शामिल हो जाता, मतलब वो फिर सानू बंदा चंगे तो माड़ा लगना शुरू हो जाता है। मतलब जो उस बंदे तो असी सोच रहे थे, जो उम्मीदा लगा के बैठे से, उम्मीदा पूरियां ना होंदिया देख के बस वो बंदा साड़ी नज़र में बुरा बन जाता है। ये तो कोई गल नहीं हुई, पर गल सोचने वाली जरूर है कि जिहड़ियां उम्मीदां है ना, ये घट तो घट रखनिया चाहिए दूजियां तो। उम्मीद होनी चाहिए है सानू सिर्फ खुद तो, क्योंकि साडा जेकर किसी ते कंट्रोल है, कोई काबू हो सकता है, उसी खुद हाँ। साडी जिंदगी साडे काबू है, बाकी किसी दी जिंदगी साडे काबू नहीं। सानू नहीं पता उन्हां दी जिंदगी विच की कुछ चल रहा है। एक अंग्रेजी कहावत भी है कि डोंट टॉक इफ यू डोंट नो अबाउट मी। चलो जी फिर इन्होंने भी मैसेज दे के मेरे दिमाग में किस्सा मुड़ आ गया, क्योंकि इन्होंने भी कोई उम्मीद नहीं रखी कि आज ये एक गीत सुनाया जाएगा। इन्होंने कहा किसी भी गीत दे विच शामिल कर लिया जाए, तो बस यही है घट तो घट उम्मीदा का होना। पर दोस्तों मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुहानू मना कर रही हूँ, फरमाइशी प्रोग्राम में अपनी फरमाइशा जरूर भेजनी है, तो कोशिश रहेगी ज़्यादा तो ज़्यादा फरमाइशा पूरिया करन दी। तद तक असं सुनते हाँ किशोर कुमार दे सपनों की रानी। अपनी सपनों की रानी बारे की कुछ कह रहे हैं, आओ जी फिर सुनते हैं उन्होंने ही जुबानी।

तार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया पाई सुच्चा सिंह पाठक दा। दुआओं में हमेशा याद रखना। मैं कह जी दुआवां दे विच वी ते हकीकत विच वी हमेशा तुहानू याद रख दिया, क्योंकि तुसी हो ताही ता असी हाँ। प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच लो जी अगला गीत पेश करन जा रहे हैं। फिल्म हीरा तो ते गीत दे बोल ने तुहाडे रेडियो सेट्स से।

0: ओ रीमा, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्निया जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहन ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो आया। तुसी भी लवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

हाँ जी, मैं कह जी मोहम्मद रफी साहब दीवाज विच गीत सुने आओ फिरकी वाले। वैसे फिरकी वाली या फिरकी वाला उसनू कह जाता है जो लारे इंसान बहुत लगता है। तुसी तो नहीं लारे लाए किसी नू, किसी खास दोस्त नू या किसी खास शख्स नू जिस नाल मिलन दा प्लान तो बनाया पर वक्त दी मजबूरी या फिर कोई होर मजबूरी जिस करके मुलाकात पूरी नहीं हो पाई, तो प्लान जल्दी मुकम्मल कर लेना क्योंकि इदन हो फिर वह भी तुम्हें इसी तरह कह लग पैन फिरकी वाले या फिरकी वाली। प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे हो अपने दोस्त आज नेहा रलन दे नाल। ते गाओ खोंखरा वाली तो मैसेज आया है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच विनोद बारा साहब विशाल विकास रोशनी शगुंदा इस नाल ही दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा पारस मणि पुष्पेंद्र ते नोखे लाल मैसेज कर रहे हैं। ते नया दौर फिल्म दे गीत दी फरमाइश लेके हाजिर हुए ने हनुमानगढ़ राजस्थान तो रजक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान। ते एक होर मैसेज आया है जी, मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा पर लिखते ने मैम जी पब्लिक मंच प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया पर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए। ते नाले भी लिखते ने कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट सी क्राइम। मैं कह जी क्राइम की दुनिया है ही इधर ही, जिहड़ी चीज़ डिफिकल्ट होए ना खासकर अपराध वर्गी उस तो बहुत बहुत दूरी बना के रहनी चाहिए है, ता ही खुद नू ते अपने आस पास के लोगों की हिफाजत कर सकते। दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच एक होर मैसेज शामिल करना चाहूँगी जो कि असाम तो आया है हितेंद्र दास दा। ते लो जी फिर इन्हां सारे ही दोस्तों की रली मिली पसंद ते सुनदे हां मोहम्मद रफी ते आशा भोसले की आवाज़ दे विच ए प्यारा जिहा गीत।

मैं नज़र से एक अंदाज़े नज़र होता हुआ, कौन है दिन रात मुझ में बेखबर होता हुआ। खुलता जाता है समुंदर बात बात दर बात बा, मैं सफ़र करता हुआ मुझसे सफ़र होता हुआ। दोस्तों, मिलन तो पहला बहुत उम्मीदा से उस तो कि वो शख्स कुछ खास चीज़ा लेके आएगा, पर जब वो शख्स आया जो सोचिया से उस तरह हर एक चीज़ तो नहीं सी, पर सब उम्मीदा दे शिकवे शिकायत जर्रा जर्रा बह गए जद उस दी नज़र ते नज़र गई। फिर किसी होर नज़र दे काबिल ना रही ए नज़र, शिकवे शिकायत सब जर्रा जर्रा हो गए, उम्मीदा नवे सिरे तो फिर दोबारा पैदा हुई।

चाहे जो भी हो, इस पल में रहोगे तो जिंदा रहोगे। जुबैर के सर लिखते हैं, नजर नजर से मिलाओगे, मारे जाओगे, ज्यादा बोझ उठाओगे, मारे जाओगे। कोई नहीं है यहाँ इतबार के काबिल, किसी को राज बताओगे, मारे जाओगे। दिल दे राज कहते दिल तक रखने चाहिए, पर जेकर कदे फरोलने पै जान तो इस गल दा यकीन जरूर होवे कि सामने वाला तुहाडे राज हिफाजत नाल रखेगा, सजो के रखेगा। प्रोग्राम शामी गजल दी आखिरी गजल तुहाडी पेशे खिदमत करन जा रहे हैं, जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ दे विच।

हिंदी नगमियां दा एक खास प्रोग्राम, थोड़ियां थोड़ियां गल्लां रहनगियां ते बहुत सारे नगमे। रात 11 बजे तक प्रोग्राम विच तुहाडा ते मेरा साथ बनिया रहेगा। गल करिए तमन्ना दी, जीन दी। जद किसी नू वेख के तुहाडे अंदर जीन दा उत्साह भर जाए ते बस जी चाहता है उसकी ही तमन्ना करता है। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ।

वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम की था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जर्रा जर्रा, तुम्हें याद हो कि ना हो।

फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था, सामने बैठा था वो मेरे, बैठा था या नहीं। वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकती थी, छू सकती ना थी।

गली गली मेरी याद बिछी है, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है, तो मेरी हदों से दूर निकल।

बस कोई ऐसी कमी सारे सफर में रह गई, बस कोई ऐसी कमी सारे सफर में रह गई, जैसे कोई चीज चलते वक्त घर में रह गई। कौन ये चलता है मेरे साथ बेजिस्मो सदा, चाप ये किसकी मेरी हर रह गुजार में रह गई।